92.2 मेगाहर्ट्ज पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

सारे दा अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी मैं तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इये बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

कान में दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारे अंदा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला के श्रोता तो हाँ सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दिन कार्यक्रम दा अगला गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते।
1: मैं डरने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018117019. आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद

0: अपना कैसे कर्तव्य निभाएंगे, तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
2: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा, इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
1: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
2: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
3: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
4: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
5: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

0: सर्जन? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा बच जाओ।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
4: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
6: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
7: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

दोस्तों कहते हैं अति के बाद क्षति तय है। आप चाहे जितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, इतिहास गवाह है रावण का ज्ञान, दुर्योधन का बल और कंस का धन अब सब जो है अति के कारण ही मिट्टी में मिल गए। दीपक में अगर तेल हद से ज्यादा भर दो तो वो भी बुझ जाता है। वैसे ही जब इंसान हद पार करता है तो वो मिट जाता है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद अगला कदम नीचे ही आता है, यही तो प्रकृति का नियम है। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस बहुत ही प्यारी सी सुबह की शुरुआत के साथ इस समय आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से कार्यक्रम के साथ। जी दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला की, तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे हैं और अपनी सेहत का ध्यान बेहद अच्छे से रख रहे हैं, खुद का भी और परिवार वालों का भी। हर किसी का ध्यान हमारी नज़रों के सामने रहता है, खास करके घर की महिलाओं की नज़रों में। जी दोस्तों, बच्चे बड़े बूढ़े जो भी हो, हर किसी का ध्यान वो एक एक बात जो है हर पल ध्यान में रखती हैं। तो आज की हम बात करें तो आज 12 मई 2026 का दिन है दोस्तों, और इस दिन को खूबसूरत बनाने के लिए इस प्यारे से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 9:04 हो चुके हैं दोस्तों और अब 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये बहुत ही मीठा सा सफ़र आप सभी अपनी डेली रूटीन के साथ इंजॉय करने वाले हैं। तो आइए, देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं मनोरंजन की एक प्यारे से मीठे से गीत के साथ, क्योंकि बातें तो अब आप ढेर सारी सुनने वाले हैं और एक्साइटमेंट के साथ कि आज के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है, यानी कि क्या खास बातचीत रहने वाली है। तो उसके लिए तो आप सभी को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, स्टेप बाय स्टेप आप सभी को जानने के लिए जुड़े रहना होगा अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन की।

तो सुबह बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो मौसम की हम बात करें तो क्रिकेट के खुमार में समय डूबा हुआ था धर्मशाला, क्योंकि बिल्कुल दोस्तों 11 से शुरुआत हो चुकी है इस रोमांच भरे समय की और साथ ही मौसम ने भी करवट बदल ही दी है। लेकिन बात करें हम मैच की, क्रिकेट मैच की, तो कल तो फिलहाल जब मैच का समय था तो मौसम ने बिल्कुल साथ दिया। बात करें इंद्रु नाग देवता जी की, जो कि हम उन्हें बारिश का देवता भी कहते हैं, तो उन्होंने पूरी तरह से साथ दिया है, लोगों को इंजॉय करने के लिए खूब समय दिया। लेकिन वहीं हम बात करें दोस्तों किसानों की, तो किसानों को कहीं ना कहीं मौसम फिर से परेशान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दो छुट्टियां थी, दो छुट्टियों का तो लोगों ने भरपूर एंजॉय जो है, फायदा जो है वो लिया, लेकिन उसके बाद फिर से मौसम ने करवट बदल दी और फिर से दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई। लेकिन इस बार मौसम एकदम से अचानक से, मतलब कि एक लोगों को धोखा दे रहा है कि पता ही नहीं चल रहा कब मौसम खराब और कब बारिश जो है वो एकदम से आ गई, तो ऐसे में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होती है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं हम और जब वो मेहनत एक तरह से कह सकते हैं ना कि उस पे पानी फिर रहा हो तो निराश तो हम हो ही जाते हैं। तो जी दोस्तों, ये उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने अपनों के साथ, फैमिली के साथ कल जाके मैच एंजॉय किया, अभी और भी 3 मैचेस हैं अभी धर्मशाला में, 13 को, 17 को और 26 मई को, तो खूब सारे एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो पल है ना अपनों के साथ, खास करके फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ भी कह सकते हैं, क्योंकि एंजॉय तो किसी के भी साथ किया जा सकता है, लेकिन फैमिली की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फैमिली के साथ हम बहुत कम समय बिताते हैं, तो ये छोटे छोटे से बहाने होते हैं कि उनके साथ बैठकर एंजॉय किया जाए। तो ज़रूर दोस्तों जाइए, खूब एंजॉय कीजिए, घर में बैठ के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्टेडियम में जाके ही एंजॉय किया जाए। और इसी के साथ दोस्तों मौसम की हम बात करें तो इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ये तो हमारी आंखों देखा हाल है मौसम का। जी दोस्तों, फिलहाल मौसम साफ है लेकिन कोई पता नहीं कब बारिश लग जाए। लेकिन मौसम विभाग की अपडेट क्या कहती है हमारे लिए, वो जानना भी बेहद जरूरी है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मई महीने में भी मौसम के तीखे तेवर जारी हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार को भी रात तेज आंधी, गरज चमक और बारिश हुई, और वहीं हम सोमवार की बात करें तो सुबह के समय 3-3:30 के आसपास खूब सारी बारिश हुई और खूब सारी आंधी तूफान जो है वो देखने को मिले। अब आज की हम बात करें तो आज भी क्या पता किस तरह से मौसम रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 15 मई तक बारिश, आंधी और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 मई तक मौसम खराब बने रहने का अनुमान जताया गया है। जी दोस्तों, तो ये है मौसम की अपडेट, और इसी तरह से हमें सतर्कता के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है और हर एक चीज को मैनेज करना है, एडजस्ट करना है खुद को इसी के हिसाब से। फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि बातचीत के साथ साथ गीत संगीत को भी एडजस्ट करना बेहद जरूरी है। तो एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

0: दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है इस समय 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। कहते हैं समय का चक्र कभी किसी के लिए नहीं रुकता, न आंसुओं के लिए न खुशियों के लिए, तो यूं ही बैठे रहने से अच्छा है चलते रहिए, टूटते रहिए फिर संभलते रहिए। हर बदलाव आपको तोड़ता नहीं ढालता है। बस याद रखिए, कमजोर वो नहीं जो रोता है, कमजोर वो है जो रुक जाता है। आज आप हो, कल कुछ और होगा और वो कुछ और आपसे भी ताकतवर होगा। जी दोस्तों, तो इन छोटी छोटी सी बातों को अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ते समय याद रखेंगे या अपने साथ रखेंगे, तो शायद कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। बस खुद को टूटने नहीं देना है, बिखरने नहीं देना, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव एक पहलू है, एक पार्ट है हमारी लाइफ का। हमें सबक सिखाने के लिए जिंदगी की एक जो है, जिंदगी की जीने की कला जो है, वो इन छोटी छोटी सी बातों से हम सीख पाते हैं। तो फिलहाल दोस्तों 9:20 हो चुके हैं और अब समय है रुचिका की बातों से हटकर थोड़ा सा अपने आसपास की कुछ खास जानकारियां जानने का। जी दोस्तों, प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से आप सभी के साथ जुड़ेंगे ढेर सारी बातों के साथ और साथ ही ढेर सारी जानकारियों के साथ।
1: प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया

0: प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कल 37,591 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इन चुनावों के लिए कुल 80,153 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 14,590 नामांकन दर्ज किए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 493 नामांकन प्राप्त हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान करवाए जाने हैं। नगर पंचायत नारकंडा के सभी पदों पर एक एक ही नामांकन दर्ज किए गए हैं, जिससे नारकंडा प्रदेश का पहला निर्विरोध निर्वाचित शहरी निकाय बन सकता है। हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और पहली जून से चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण को आरंभ करने की घोषणा की है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में PITNDPS एक्ट के तहत कार्रवाई में हिमाचल पहले नंबर पर आया है। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत देश भर में दर्ज मामलों में 33% से अधिक कार्रवाई के मामले हिमाचल के हैं। नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 234 पंचायतों को नशे की संलिप्तता के आधार पर चिन्हित किया गया है, जहां विशेष नशा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि चिट्टे में संलिप्त 123 कर्मचारियों में से 31 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 90 और सरकारी कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मंडी में विकास कार्यों को गति देने के बजाय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आवंटित 15 करोड़ रुपए को सरकार ने वापिस लेकर दूसरी जगहों पर खर्च किया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है।
1: मंडी में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी नगर निगम बनाने में सफल हुई है और अब की बार भी सफल होगी बहुत बड़े बहुमत के साथ। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से मंडी को, पूरे हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज किया विकास कार्य के दृष्टि से, मंडी को एक बार नहीं अनेकों बार जलालत की है, तो लोग जो है बहुत गुस्से में है वर्तमान कांग्रेस सरकार के, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते।
0: पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला जिला से कांग्रेस समर्थित पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है, जिस वजह से इन चुनावों में कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि भाजपा व इनके नेताओं ने विकास को नजरअंदाज किया है और विकास कार्यों में अड़चने खड़ी की है।
2: इलेक्शन हमेशा जो है कभी पार्टी सिंबल पे नहीं हुए हैं, हमेशा जो है इंडिपेंडेंट हुए हैं, परंतु इस बार भाजपा ने एज अ स्ट्रैटेजिक मूव बोल सकते हैं, उन्होंने पूरे स्टेट में जो है अपने उम्मीदवार घोषित करे हैं। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार जो है हर क्षेत्र में जो लोकल MLA हैं उनके लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे अपने अपने कैंडिडेट जो है उतारे हैं। पिछले 5 साल की भी अगर मैं बात करूंगा भाजपा की सरकार की, वो अगर 2-3 गांव भी गिनाते हैं बड़े क्षेत्र के, हमारे कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जो है हम लोग अच्छे बहुमत से जो है जिला शिमला में बहुत अच्छी लीड से कांग्रेस के जिला परिषद भी बनाएंगे और BDC चेयरमैन और सदस्य भी बनाएंगे।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में हो रहे 4 नगर निगमों के चुनाव को लेकर भाजपा आज अलग अलग संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि सभी नगर निगमों के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट होगा। संकल्प पत्र आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जारी किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में, भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार पालमपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल धर्मशाला में संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे। पार्टी ने दावा किया है कि नगर निगम चुनाव में जनता विकास, पारदर्शिता व जवाबदेही की राजनीति को चुनते हुए भाजपा को समर्थन देगी।

0: नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य व प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल चार नगर निगम के चुनाव के प्रचार के लिए आज से प्रदेश के दौरे पर रहेगी। रजनी पाटिल आज सोलन में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेगी और रोड शो के माध्यम से मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करेगी। कल 13 मई को रजनी पाटिल मंडी, 14 मई को पालमपुर और 15 मई को धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए रोड शो और चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 6000 अफीम के पौधे और 500 ग्राम से अधिक चरस बरामद की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला में नशे के विरुद्ध चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान को लेकर पेश है एक रिपोर्ट।
1: मंडी जिला के औट, बल और सदर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती और चरस तस्करी मामलों का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान कुल 5971 अफीम के पौधों और 529 ग्राम चरस बरामद की गई, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना औट के तहत गाँव धलोट के दुर्गम क्षेत्र में करीब 10 बीसवा भूमि पर अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की खेती पकड़ी गई, जहां से 3220 पौधे बरामद किए गए। वहीं दूसरी कार्रवाई में इसी गांव में करीब 9 बीसवा भूमि में 2791 अफीम के पौधे बरामद हुए। पुलिस ने दोनों जगह पौधों को कब्जे में लेकर नियम अनुसार नष्ट कर दिया और NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सभी मामलों में नियम अनुसार जांच जारी है और नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
0: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन के समीप कोलार गांव में अज्ञात हमलावरों द्वारा 2 लोगों पर हुए हमले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने के कारण ही लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। बिंदल ने कहा कि कालंब और पांवटा साहिब क्षेत्रों में टिप्परों की आवाजाही अनियंत्रित है, जिससे आए दिन टिप्पर चालकों और आम लोगों में ऐसी झड़प हो रही है। उन्होंने सरकार से 24 घंटे के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज दिन की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई है, जबकि लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और सोलन जिलों के लिए वर्षा व ओलावृष्टि के साथ तूफान आने का येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। मुख्यमंत्री के हवाले से अमर उजाला ने सुर्खी दी है, हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए अब एंटी चिटर टेस्ट होगा अनिवार्य। दैनिक जागरण का शीर्षक है, कॉलेजों में प्रवेश व सरकारी नौकरी से पहले अनिवार्य होगा डोप टेस्ट। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, चिट्टे को लेकर 234 पंचायतें रेड जोन में। 6 महीने बाद फिर शुरू हुई दिल्ली शिमला धर्मशाला सस्ती हवाई सेवा, शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, सप्ताह में 6 दिन चलेगी सेवाएं। दिव्य हिमाचल व हिमाचल दस्तक की एक खबर है, चंबा के ककीरा में गिरी गुजरात के पर्यटकों की गाड़ी, 6 की मौत, 4 घायल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी, 80,153 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। चिट्टे के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनाया सख्त रुख, चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण के साथ ही नशे के खिलाफ लिए कई अहम निर्णय। प्रदेश में 4 नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार तेज, भाजपा और कांग्रेस नगर निगमों के लिए अलग अलग जारी करेगी घोषणा पत्र। मंडी जिला में विभिन्न क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी और लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी। मौसम विभाग ने 10 जिलों में वर्षा व तूफान की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

तो से इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। दोस्तों अक्सर हम जिंदगी में यही सोचते रहते हैं कि छोटी छोटी सी परेशानियां जब हमारे सामने आ जाती हैं तो हम उनसे हार मान लेते हैं, लेकिन क्या कभी इस बात पे गौर की है, कभी इस बात पे ध्यान दिया है? क्योंकि सबसे खतरनाक हार वो नहीं होती जो दुनिया आपको देती है, सबसे खतरनाक हार वो होती है जो आपको खुद के साथ जो है छोटी छोटी सी बातों पर हार मानना शुरू कर देते हैं, या यूं कहें कि खुद से हारना शुरू कर देते हैं, या हमारा जो दिमाग हमारी मानसिक स्थिति मेंटेलिटी जो हमें देती है वो हमारी हार होती है। कभी नोटिस किया है कुछ लोग बार बार गिर कर भी वापस उठ जाते हैं, और कुछ लोग एक छोटी से फेलियर के बाद अंदर से टूट जाते हैं। इन दोनों बातों में डिफरेंस सिर्फ टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस माइंडसेट का होता है। क्योंकि लाइफ में असली गेम बॉडी का नहीं माइंड का है, और अगर आपका माइंड स्ट्रांग नहीं है तो पैसा रिलेशनशिप सक्सेस कॉन्फिडेंस कुछ भी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आप अगर छोटी छोटी बातों पे हार मानते हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्या आपको भी ये लगता है कि हमारा जो माइंड है हमारा जो दिमाग है कहीं ना कहीं वो उसका रीज़न होता है? तो ये सोचना और समझना हमारे लिए अक्सर बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल एंजॉय कीजिए कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत संगीत, उसके बाद हम फिर से वापस आते हैं अपनी इस प्यारी सी और ख़ास और गंभीर सी बातचीत के साथ।

0: दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया आशा भोसले की आवाज में, और कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की आवाज के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और कहीं ना कहीं हम अपनी मेंटेलिटी की बात कर रहे हैं, दिमाग की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों कई बार क्या होता है और देखने में भी मिलता है, चूंकि बच्चों को पहले तो खैर स्कूल में डांट टपट दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हर एक फैसले जो है हमारे मुंह तक पहुंच रही है और हम इतने इमोशनल, इतने कह सकते हैं कि मोह माया में, भावनाओं में बह जाते हैं कि पेरेंट्स अब इस बात के लिए भी अलाउ नहीं करते हैं। खैर कोई इस बात का गलत फायदा भी उठा लेते हैं, तो उसके लिए आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा डर होना भी ज़रूरी है। क्योंकि जब बच्चों को कोई डांटेगा नहीं, कोई डर नहीं होगा, तो अगर गलती से भी उन्हें किसी ने कुछ बोल दिया, भले ही पेरेंट्स ने ही कुछ बोल दिया, तो वो इतने डर जाते हैं, सहम जाते हैं कि उनमें हिम्मत नहीं होती कुछ बात कर पाने की, और फिर वो तनाव में चले जाते हैं। और तनाव एक ऐसी बीमारी है खास करके बच्चों के लिए कि उससे निकल पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। और इससे जुड़ी एक न्यूज़ भी है, वो भी आपके साथ साझा करूंगी दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं ये हम सोचते हैं ना कि बच्चों को, हम सुनते हैं कि बच्चों को डांटा जाए, उन्हें मारा जाए, तो वो कोई गलत स्टेप ना उठा लें, लेकिन सही समय पर उन्हें सही तरीके से अगर समझाया जाए तो शायद वो गलतियां करना छोड़ दें, शायद उन्हें उस गलती का एहसास हो। जब उन्हें उस गलती का एहसास होगा तभी वो रुकेंगे, अदरवाइज़ वो गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे। क्योंकि पेरेंट्स की नज़र होते हुए भी अगर पेरेंट्स उस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो एक दिन बच्चा बहुत बड़ी गलती करके भी आ जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि पेरेंट्स कुछ बोलेंगे नहीं, पेरेंट्स को डर है कि उनका बच्चा कहीं कुछ गलत स्टेप ना उठा ले। दोस्तों अगर गलत तरीके से बोला जाएगा तो वो गलत करेंगे, लेकिन अगर आप सही तरीके से, सही सिचुएशंस के हिसाब से अगर बच्चों को समझाएंगे, उनके साथ बैठ के बात करेंगे, तो शायद वो गलत रास्तों पर जाने से पहले 100 बार सोचें, और किसी के साथ गलत करने से पहले भी वो 100 बार सोचें। यहाँ भी पेरेंट्स की पेरेंटिंग सवाल उठा देती है, क्यों उठाती है ये भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक मस्ती भरा प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए।
1: Punjab2000.co.uk exclusive.

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये पंजाबी गिद्दा सॉन्ग आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से, क्योंकि जब कुछ खास और गंभीर सी बातचीत होती है तो थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की ज़रूरत होती है कि कहीं आप भी बातें सुनते सुनते तनाव में ना चले जाएं, इसलिए मस्ती तो होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, बीच बीच में थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाए तो ज़िंदगी भी हमें एक ब्रेक देना शुरू कर देती है। खैर दोस्तों, ये बातचीत तो इसी तरह से ज़िंदगी से जुड़ी बातें हैं और ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं और ना ही होनी चाहिए, क्योंकि ये बातें ही हमें सबक भी देती हैं, सीख भी देती हैं। लेकिन जो सबक नहीं लेते हैं फिर वो बाद में पछताते हैं, क्योंकि समय हाथों से निकल चुका होता है और जब समय निकल जाता है तो फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। तो फिलहाल तो ये कुछ खास बातें हैं, लेकिन इसी के साथ हमारे लिए ज़रूरी हैं कुछ खास जानकारियाँ। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं एक बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों, प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कोर्स के प्रवेश परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन कार्यालय की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार प्रवेश परीक्षाएं 1 जून से 15 जून तक चलेंगी। परीक्षाओं के लिए तय किए गए शेड्यूल के अनुसार BBA, BCA, MSc, डाटा साइंस व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और MPED, MA, फिजिकल एजुकेशन की प्रवेश परीक्षा 1 जून को आयोजित की जाएगी। MA, सोशल वर्क, MA, म्यूजिक, MA, ग्रामीण विकास और MA, विजुअल आर्ट की प्रवेश परीक्षा 2 जून, जबकि MA, योगा, MEd, MA, सोशियोलॉजी की प्रवेश परीक्षा 3 जून को रहेगी। इसी तरह से बाकियों का भी शेड्यूल रहेगा। दोस्तों, ये 15 जून तक चलने वाले हैं, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी तक पहुंचाई गई है रेडियो गुंजन धर्मशाला के माध्यम से, क्योंकि अगर आप भी प्रवेश लेना चाहते हैं तो ज़रूर इसके लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब फसलों के काम लगभग हो ही चुके हैं। लेकिन खैर, आज के बच्चे करते भी बहुत कम हैं, बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि हेल्प कराते हैं। कई बार तो पेरेंट्स भी मना कर देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर आप एकदम से फिट एंड फाइन रखना चाहते हैं तो हर एक काम में बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए। इस मेंटेलिटी को पीछे छोड़कर कि ये काम छोटा है या बड़ा है, या ये लड़की करेगी या ये लड़का करेगा, क्योंकि ये डिफरेंस पेरेंट्स ही बच्चों में पनपना शुरू कराते हैं और बाद में बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से सीख कर आ जाते हैं और ऐसी ऐसी बातें करने लग जाते हैं। तो पहले अपने आप में झांक कर हमें ज़रूर देख लेना चाहिए। जी दोस्तों, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी की अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों, हर दिल जो प्यार करेगा, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों इमेजिन कीजिए कि सुबह उठते ही एंजाइटी नहीं, क्लैरिटी फील हो, लोग क्या सोचेंगे ये डर नहीं, बस अपने गोल्स की आग हो, हर मुश्किल सिचुएशन में पैनिक नहीं कंट्रोल हो, यही होता है अनब्रेकेबल माइंडसेट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज ज्यादातर लोग मेंटली स्ट्रांग दिखते हैं पर अंदर से कंप्लीटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। इंस्टाग्राम पर स्माइल और रात को अकेले में ओवरथिंकिंग, बाहर कॉन्फिडेंस अंदर डर, लोगों को लगता है वीकनेस छुपाने से इंसान स्ट्रांग बन जाता है, लेकिन सच तो ये है जो इंसान अपनी वीकनेस फेस नहीं कर सकता वो कभी भी मेंटली पावरफुल नहीं बन सकता। और शायद आप भी इसी फेज से गुजर रहे हो, फैमिली प्रेशर, करियर टेंशन, मनी प्रॉब्लम्स, कंपैरिजन, लॉनलीनेस, सब कुछ एक ही साथ, ये सारी चीजें हमें परेशान करती रहती हैं। और सबसे डेंजरस चीज क्या है पता है आप सभी को? धीरे धीरे इंसान खुद पर डाउट करना शुरू कर देता है कि शायद मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद लाइफ मेरे अगेंस्ट है। बस यही सब थॉट्स धीरे धीरे आपको अंदर की आग जो है वो खत्म कर देते हैं। जो जुनून आपके अंदर होता है कि हम कुछ कर दिखाएंगे, कुछ करना है जिंदगी में, जब आप अपने आप से ये सवाल या अपने आप पे ये डाउट करना शुरू करते हैं तो उसकी वजह से वो कैपेबिलिटी कहीं ना कहीं विलुप्त होती जाती है, खत्म होती जाती है। फिर आप अपने ही आप से मुंह मोड़ लेते हैं, आप दूसरों से खुद को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और जो बची हुई हिम्मत होती है वो भी कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आने लगती है। तो इस हिम्मत को टूटने मत दीजिए, अपने आप को जानिए, समझिए और बस इतना याद रखिए कि आप खुद के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जी दोस्तों, और इस समय कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हर दिन की अपनी एक खासियत, अपनी एक अहमियत, अपने आप में एक कहानी जरूर रहती है। तो आज के दिन यानी कि 12 मई 2026 के दिन की क्या कहानी है, क्या खासियत है, क्या अहमियत है इस दिन की खुद में ही। जैसे हम सभी की अपनी अपनी जिंदगी की अपनी अपनी एक कहानी है, उसी तरह से दोस्तों इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के दिन की हम बात करें तो आज मना रहे हैं आप बहुत ही खास दिन, जरूर बात करेंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, उसके बाद फिर से वापिस आएंगे अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ।

दोस्तों बहुत ही ये प्यारा सा मीठा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया और इसमें आप सभी को थोड़ा सा बदलाव तो जरूर नजर आया होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, तो ये है एआई का कमाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर कहीं छाया हुआ है और दोस्तों ये टेक्निक हमें कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी है, लेकिन कहते हैं ना कोई भी फैसिलिटी, कोई भी चीज़ जब हमारी जिंदगी में आती है तो हर चीज़ के दो पहलू रहते हैं, एक सकारात्मक तो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक भी रहता है। अब इसका नकारात्मक इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं बच्चों की ज़िंदगी में हम कह सकते हैं देखने के लिए मिल सकता है। अब ये भी सवाल है कि कैसे और क्यों। तो देखिए दोस्तों, जब हर चीज़ के लिए हम डिपेंड हो जाएंगे, क्योंकि छोटी सी छोटी बात के लिए हम फटाफट से इसमें लिखते हैं और हमें वो फॉर्मेट हो चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, फटाफट से हमारे सामने वो चीज़ें आ जाती हैं, तो अपने दिमाग पे जोर डालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम एकदम से कह सकते हैं कि आलस में जा रहे हैं, और एक वर्ड बहुत ही अजीब लगेगा लेकिन हाँ, नॉर्मल आम भाषा में कहें तो एक निठल्लापन जो है हमारे में आ जाएगा। तो दोस्तों अपने दिमाग को हमें एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, और हम शुरुआत में बात भी कर रहे थे तो ये एक्टिव तो तभी रहेगा जब हम छोटी छोटी सी बातों की तह तक जाएंगे, उसकी गहराई तक जाएंगे। क्योंकि एक टॉपिक के लिए पहले बच्चों को 10 बुक्स खोलनी पड़ती थी, तब जाके उसका कुछ कंक्लूजन निकलता था, लेकिन अब फटाफट से फ़ोन उठाया और सिर्फ टाइप किया और सारी चीज़ें सामने, तो है ना ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बैड इम्पैक्ट भी। तो यूज़ कीजिए, हमारी सुविधाओं के लिए ये चीज़ें हैं, लेकिन पूरी तरह से डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं हमें एक गलत रास्ते की ओर लेकर जाती है। उसी तरह से सोशल मीडिया का भी यूज़ हमारे लिए यही पहलू है, जैसे मैंने अभी कहा दोस्तों कि जब हम बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं, माना जो कि क्योंकि कुछ लोग ना अपनी जॉब्स छोड़कर, अपने काम को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के सहारे उसी पर डिपेंड हो चुके हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना बेहद ज़रूरी है। कोई नहीं जानता कि कब कौन सा समय किस तरह से हमारे सामने आ जाए। गेस कीजिए या सपोज कीजिए कि कल को आपका अकाउंट डिलीट हो जाए, आपने बहुत मेहनत की है उसके लिए, सालों लगा दिए, पूरी कमाई लगा दी, और उसके बाद वो एकदम से बंद हो जाए, तो आपकी तो नींद चैन सब उड़ गए ना, क्योंकि आपने तो मेहनत की थी, इतनी मेहनत से लोगों को आपने अपने साथ जोड़ा था। अब दोबारा से स्टार्टअप करना, दोबारा से उस चीज़ को लाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पहले से ही खुद को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है कब आपको किस मोड़ पे जो है वो लेकर आ जाएगा। तो प्रिपेयर रहना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी, क्योंकि पहले से प्रिपेयर होंगे तो ज़्यादा जोर का झटका नहीं लगेगा, लगेगा तो संभलने की हिम्मत हम में होगी, बस इतना सा कहना चाहती हूँ। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, क्योंकि बातें तो बहुत सारी होती हैं ज़िंदगी से जुड़ी हुई और बहुत खास बातें होती हैं, लेकिन क्या करें, समय है ना, समय सुनता नहीं है, तो थोड़ा सा हमें ही समय की बात को सुनना पड़ता है। आइए इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों झूठ बोले कौवा काटे फिल्म का ये बेहद प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अलका याग्निक और हरिहरन की आवाजों के साथ। तो आइए इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से अपनी बातचीत का रुख जो है लेकर चलते हैं जानकारियों की ओर, क्योंकि दोस्तों बातचीत के साथ साथ कुछ खास खास जानकारियां हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी हैं।

हिमाचल सरकार ने चिट्टे के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भविष्य में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट सरकार जरूरी कर देगी। डॉक्टर और इंजीनियर जैसे कोर्सों में एडमिशन पर भी ये टेस्ट जरूरी रहेगा। सरकारी संस्थानों में डॉक्टर और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे छात्रों की भी हर साल ड्रग जांच करवाई जाएगी। उनका कहना है, यदि किसी छात्र की जांच में चिट्टा या फिर अन्य नशीले पदार्थों के सेवन की पुष्टि होती है तो उसे सीधे रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाएगा। सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगी और नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। जी दोस्तों, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पहली जून से 20 अगस्त 2026 तक प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान के दूसरे चरण को व्यापक स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 10 शिक्षण संस्थानों का दौरा कर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि दवा निर्माण और वितरण को लेकर फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा नियमों की सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित की जाएगी तथा दवाओं के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि अच्छा कदम है युवाओं के भविष्य को नज़र में रखते हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि धीरे धीरे जो है ये नशे की लत बढ़ती जा रही है। खास करके हम चिट्टे की बात करें तो सचमुच ये जो है युवाओं की ज़िंदगी को खोखला करता जा रहा है, कहीं ना कहीं दबाता जा रहा है। तो ऐसे में हमें सतर्क और सावधान रहना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे चाहते नहीं हैं, उन्हें पता है हर चीज़ के नॉलेज उन्हें होता है, लेकिन जो दोस्त होते हैं कुछ शरारती कह सकते हैं या फिर जानबूझकर कोई उनकी रिस्क होती है या कुछ भी लड़ाई झगड़े वो साथ में लेकर चलते हैं, तो उसकी वजह से वो जाने अनजाने में बच्चों को उस लत में लेकर आ जाते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान होने के नाते हमें इंसानियत का फर्ज नहीं भूलना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों, इन्हीं प्यारी सी बातों के साथ, इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम में एक और प्यारा सा खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक।

बहुत ही प्यारा सा ये पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी दिन की शुरुआत के साथ एंजॉय कर रहे हैं, डेली रूटीन के साथ इस प्यारे से समय को और भी खूबसूरत पलों में बदल रहे हैं। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और हम बात कर रहे थे हर दिन की कुछ खासियत, तो आज के दिन की क्या खासियत है सोचा विचारा नहीं पता चला, तो कोई बात नहीं, रुचिका के साथ जुड़े हैं तो दोस्तों हर एक बात से रूबरू हम जरूर होंगे। तो आज के दिन से कैसे पीछे रह सकते हैं, तो आज के दिन आप सभी मना रहे हैं दोस्तों इंटरनेशनल नर्सेस डे, जो कि हर समय पेशेंट्स के भलाई के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, परवाह करती हैं और अपनी जिंदगी का खास समय जो है वो उनके लिए निछावर करती हैं। जी दोस्तों, अब आप यही कह रहे होंगे कि वो तो उनकी जॉब है और उन्हें उसके पैसे मिलते हैं तभी वो करते हैं, लेकिन दोस्तों एक अपनापन, पैसे तो हर किसी को मिलते हैं, कहीं भी हम काम करते हैं तो सिर्फ पैसों का रौब जो है वो हमारे साथ नहीं होना चाहिए। एक कहते हैं ना कि अपनापन, हमारा जो व्यवहार है, कई बार हमारी कुछ प्यारी प्यारी सी बातें भी पेशेंट को एकदम से ठीक कर देती हैं। उनके साथ अच्छा व्यवहार दवाई से ज़्यादा काम करता है, तो फिर कैसे हम ये कह सकते हैं कि वो तो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो तो पैसे कमा रहे हैं। दोस्तों जॉब अपनी जगह, लेकिन हमारा बिहेवियर वो अपनी जगह है। तो उसी तरह से हर किसी का रोल जो है वो अलग अलग रहता है, हर किसी फील्ड में, ऐसा नहीं है कि कोई कम कोई ज़्यादा, हर कोई अपनी फील्ड में बेहतर देता है, बेटर देता है, लेकिन मैटर करती हैं बातें कि वो किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से निभा रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ज़रूर इस बात पे ध्यान दीजिए। और इस पे हम जानेंगे कि क्यों आज का दिन ये ख़ास तौर पे मनाया जाता है, लेकिन उससे पहले फिर से चलेंगे एक प्यारे से गीत की ओर, तो इंजॉय की

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। दोस्तों, कहते हैं ना कि शरीर तो चला ही जाएगा, एक दिन हो सके तो जमीर को जिंदा रखना। आप कितने सही हैं और कितने गलत आपके बारे में दो शख्स को सब पता है, पहला ईश्वर और दूसरा आपकी अंतरात्मा। और हैरानी की बात ये है कि दोनों ही हमें नजर नहीं आते और हम गलत पे गलत करते जाते हैं जिंदगी में, आगे की ओर गलत के सहारे बढ़ते जाते हैं।

दोस्तों इतने बुरे भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ये प्यारे प्यारे से गीत, यानी कि एआई द्वारा क्रिएट किए गए ये प्यारे से मीठे से गीत, कुछ कुछ अच्छे म्यूजिक, हाँ सब में सेम सा है, लेकिन इंजॉय करने लायक है बिल्कुल दोस्तों। लेकिन पुराने गानों का क्या ही कंपैरिजन, वो तो खैर अपने में अपनी ही एक अहमियत रखते हैं और वो शायद हमेशा उसी तरह से रहेगी। क्या आपको लगता है कि ये नए नए गाने उनकी जगह ले सकते हैं? हाँ, युवाओं के मनों में ले भी सकते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके मन में तो वो पुराने गीत जो शब्दों कहानी बयां करते हैं, जिंदगी की रियलिटी बयां करते हैं, तो सचमुच वो तो अलग ही सुकून है। खैर दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और जानते हैं एक और बेहद खास जानकारी। दोस्तों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सितंबर 2026 सत्र के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। जी दोस्तों, इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट ctet.nic.in और cbse.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। CBSE द्वारा जारी सूचना के अनुसार सीटेट का 22वां संस्करण 6 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा देश भर के 132 शहरों में 27 भाषाओं में आयोजित होगी। उम्मीदवार 10 जून 2026 रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी यही निर्धारित की गई है। जी दोस्तों, तो फटाफट से इस वेबसाइट पर जाइए, ctet.nic.in या फिर cbse.gov.in और फटाफट से सीटेट का फॉर्म भर दीजिए। जो भरने के इच्छुक हैं, जो अभ्यर्थी भरना चाहते हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल दोस्तों आवेदन प्रक्रिया जो है वो 10 जून तक रहेगी, तो फटाफट से भरना शुरू कर दीजिए। और इसी के साथ दोस्तों, आइए इसी खास जानकारी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से रुक करते हैं अपनी बातचीत की ओर, खास करके आज के दिन की खासियत की ओर। दोस्तों हर दिन नर्सें जीवन बचाती हैं और जीवन को बेहतर बनाती हैं। उनका प्रभाव तब सबसे अधिक होता है जब उन्हें उचित रूप से सशक्त बनाया जाता है। असाधारण वैश्विक दबाव के इस दौर में इस वर्ष का विषय नर्सिंग कार्यबल की शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तनों पर केंद्रित है। देखभाल की आर्थिक शक्ति और नर्सों की देखभाल अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती है पर आधारित ये नया विषय स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने और विश्वसनीय व्यक्ति केंद्रित प्राथमिक देखभाल प्रदान करने में नर्सिंग कार्यबल की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। जो स्वास्थ्य प्रणालियों को बदल सकता है और हमारी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान कर सकता है। जी दोस्तों, तो कितनी खास बात है ना ये। पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की नर्सें लगातार जीवन रक्षक देखभाल प्रदान कर रही हैं, अक्सर बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जिनमें संघर्षों और संकटों से निपटना, उनसे उभरना और उनके बाद पुनर्निर्माण करना शामिल है। जी दोस्तों, हर एक कोशिश, हर एक जो है उनका दायित्व, वो दूसरों की सेवा के लिए, यानी कि पेशेंट्स की सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए वो है, हमेशा तत्पर रहती हैं। अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जो भी मुंह मोड़ते हैं वो कहीं ना कहीं हम जो है जिंदगी से ही मुंह मोड़ रहे होते हैं, क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई के साथ किया गया काम कभी भी हमें निराश नहीं करता। हाँ, थोड़ा उदास कई बार कर देता है, जब ज़्यादा ही दबाव बन जाता है, जब ज़्यादा ही प्रेशर जो है हम पे आ जाता है, तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम डटे रहते हैं मुश्किलों से लड़ने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए। तो यही तो हम में जुनून हर किसी में होना चाहिए। हर एक व्यक्ति में अगर ये जुनून है तो ज़िंदगी आसान है।

दोस्तों आइए इसी प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को जानकारियों की और जानते हैं एक और प्यारी सी खास जानकारी। दोस्तों अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। एम्स प्रशासन ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। अब MBBS के छात्रों को परीक्षा में फेल होने की स्थिति में संस्थान से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें खुद को साबित करने के लिए 4 के बजाय कुल 5 मौके दिए जाएंगे। ये फैसला उन छात्रों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है जो कठिन कोर्स और मानसिक दबाव के कारण परीक्षाओं में पिछड़ जाते थे। एम्स में MBBS की पढ़ाई को देश की सबसे मुश्किल पढ़ाई में से एक माना जाता है। यहाँ की परीक्षा मानक इतने ऊंचे हैं कि हर साल कुछ मेधावी छात्र भी किन्हीं कारणों से फेल हो जाते हैं। जी दोस्तों, एम्स की पुरानी गाइडलाइन के अनुसार यदि कोई छात्र 4 प्रयासों में अपनी परीक्षा पास नहीं कर पाता था तो उसे अनिवार्य रूप से संस्थान छोड़ना पड़ता था, यानी कि उसे आउट कर दिया जाता था। छात्रों के करियर को बर्बाद होने से बचाने के उद्देश्य से एम्स की कार्यकारी निदेशक रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर विवा दत्ता ने दया के आधार पर एक अतिरिक्त मौका देने का प्रस्ताव रखा और ये मौका बच्चों को दिया जा रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों, कई बार होता है बच्चे कुछ तनाव से गुजर रहे होते हैं या कुछ और सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि वो परीक्षा में उतना बेहतर नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से फिर जो है 3-4 साल सोचिए कि वो वेस्टेज की ओर ही जा रहे होते हैं, तो बच्चों को और ज़्यादा तनाव हो जाता है। तो ये भी हमारी एक ज़िंदगी का पार्ट है कि जो हम सोचते हैं अगर वो नहीं हमें मिले तो हम बहुत ज़्यादा ऐसे परेशानियों में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं और उससे बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती हैं। कई बार बच्चे घर में बता नहीं पाते और इसी डर की वजह से वो ज़िंदगी भी ख़त्म कर लेते हैं। एक बहुत ही ये गंभीर सी न्यूज़ आपने पढ़ी होगी कि 10वीं के छात्र का जो है कंपार्टमेंट आने की वजह से उस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर ली। तो सोचिए उसके मन में कितना डर, कितना दबाव रहा होगा जो उसे ये स्टेप लेना पड़ा। तो फैमिली को थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों की भावनाओं को समझना चाहिए, उन्हें समझाने का तरीका जो है वो बदलना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें और समय भी धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है आप सभी से दूर जाने की ओर। तो जाने से पहले एक प्यारा सा गीत इंजॉय करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, 91.2 MHz।

0: की हल्की मुलाकात।
1: दोस्तों श्री कृष्ण कहते हैं कोई कुछ भी बोले, कितना भी बुरा कहे, कितना भी क्रोध करे, लेकिन आप हमेशा शांत रहिए। जैसे गंदा पानी अपने आप बैठ जाता है, वैसे ही शांत मन में सच्चाई स्पष्ट दिखती है। विवाद में नहीं धैर्य में शक्ति है। प्रतिक्रिया देने की जल्दी मत कीजिए। हर बात का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता, कुछ उत्तर चुप रह कर दिए जाते हैं। याद रखिए, जो खुद शांत है उन्हें दुनिया की कोई भी हलचल हिला नहीं सकती। जी दोस्तों, तो अब समय हो गया है इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से अलविदा लेने का। तो दीजिए अनुमति अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ अलग प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ और अलग ही बातचीत के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन, धर्मशाला गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है, ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170917018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

अब 2 मेगाहर्ट्ज पर ही है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं नल्ले में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 701-8170-9, 701-8170-9। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आप

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका और
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि हम दोनों आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर आते हैं, बहुत ही खास कार्यक्रम, आप सभी का अपना मनपसंद कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान। तो ये उड़ान आप सभी की कहाँ तक पहुँची है ये जानने की हम हर बार कोशिश करते हैं, पर आपका जवाब जो है हमारे तक पहुँचने में बहुत देरी लगा देता है। पर खैर, कोई बात नहीं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। और कार्यक्रम में हम ढेर सारी जानकारियां लेकर आते हैं दोस्तों। हर कार्यक्रम में हम यही कोशिश करते हैं कि जितनी खास खास जानकारियां है ना, आप सभी तक पहुंच सके और आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके, जान सके अपने बारे में। क्योंकि आज के इस भागदौड़ भरे समय में रूमा जी, अक्सर हम अपने आप को भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल, और हमें भूलना बिल्कुल भी नहीं है रुचिका। अगर हम भूल जाएंगे खुद को तो खुद को नहीं जान पाएंगे और अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी नहीं हो पाएंगे और जरूरत पड़ने पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपने लिए।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम यही सोचते रहते हैं ना कि पड़ोसियों ने क्या किया, किसी ने क्या किया, किसी की क्या कमी है, किसमें क्या खूबी, यही बातें हम सोचते रहते हैं और अपने बारे में हम सोचना भूल जाते हैं। अपनी प्रति जो जागरूकता है उसके प्रति हम जागरूक होना भूल जाते हैं। तो हम आप सभी को जागरूक करने के लिए हर हफ्ते आ जाते हैं आप सभी के साथ ढेर सारी बातचीत लेकर। तो रूमा जी, आज हम अपने दोस्तों के लिए क्या बातचीत लेकर आए हैं?
1: रुचिका जी, हमारे दोस्तों को भी पता है और आप भी जानती हैं, पिछले हफ्ते हमने बात करी थी पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर बच्चों के संदर्भ में। तो उस समय हमने जो लास्ट में डिस्कस किया था वो ये था कि अगर कोई बच्चा गुम हो जाता है तो पुलिस उसकी किस तरह से हेल्प कर सकती है और उस बच्चे के माता पिता को या अभिभावकों को किस तरह से खोज कर उन तक पहुँचाया जा सकता है। साथ ही हमने ये भी बात करी थी कि आज के समय में बच्चे का आधार बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि आधार एक ऐसा नंबर है जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा कहीं गुम हो जाता है तो आधार केंद्र पर जाके उसके फिंगरप्रिंट्स के माध्यम से उसका पता लगाया जा सकता है। तो अनुरोध भी किया था शायद हमने अपने दोस्तों से कि कोई भी बच्चा जो है उसका आधार बनाए बिना ना रहे, क्योंकि अगर कल को कहीं गुम हो जाता है या किसी भी वजह से वो खो जाता है तो आधार के माध्यम से उसके माता पिता तक उसको पहुंचाया जा सके। तो मुझे लगता है रुचिका जी, इतनी ही जानकारी पुलिस के संदर्भ में हमारे दोस्तों के लिए काफी नहीं थी। तो हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो की बात कर रहे थे, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पुलिस का रोल उन बच्चों के प्रति कैसा रहता है जिन्होंने किसी भी तरह का कोई अपराध किया है या फिर किसी भी अपराध की श्रेणी में आती है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लोगों को अक्सर पता नहीं होता है कि बच्चों के लिए भी कोई कानून है। और दूसरा, अगर किसी बच्चे से कोई गलती हो जाती है, किसी भी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है, तो हमें कहाँ पे अप्रोच करना है, कौन सी अथॉरिटी से बात करनी है, पुलिस का वहाँ पे क्या रोल रहता है, और अगर उनको जानकारी है और कहीं पे कुछ गलती हो रही है तो आम पब्लिक जो है, आम जनता जो है, उस गलती का निष्पादन खुद ही कर सकती है, और इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि अक्सर हम बच्चों के लिए हर चीज को लाइटली ले लेते हैं कि बच्चे हैं, खैर क्या ही करे होगा, मतलब बात को दबा देते हैं। ज्यादातर कोशिश हम यही करते हैं और ऐसा हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता है और जानकारी जो है आधी अधूरी मिली होती है या होती ही नहीं।
1: बिल्कुल,
0: तो यही हमारा कार्यक्रम का खास उद्देश्य है दोस्तों कि बच्चों के लिए जो कानून बनाए गए, जो उनके लिए अधिकार हैं, उनके प्रति आप जागरूक हो सके और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उन अधिकारों का आप जिंदगी में प्रयोग करें, अपनी जिंदगी में उन्हें लेकर आए।
1: बिल्कुल रुचिका जी, हम आगे भी जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे कि पुलिस का रोल उन बच्चों के संदर्भ में क्या रहता है जिन बच्चों ने किसी भी प्रकार का कोई अपराध किया है। लेकिन इतना गंभीर मुद्दा है तो मुझे लगता है हमारे सुनने वाले जो हैं वो भी परेशान हो जाएंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: तो क्यों ना थोड़ा सा माहौल को पहले हल्का फुल्का कर लिया जाए।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, मुझे पता है रूमा जी किस और इशारा कर रहे हैं और आप सभी भी जानते हैं, खैर पर फिर भी चलो बता देते हैं आपको एक बार फिर से कि आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की एक गीत के साथ, क्योंकि जब हम गीत सुन लेते हैं ना तो फिर बातें सुनने का भी मन कर जाता है, क्योंकि ऐसे शुरुआत में जब बातें पटर पटर करने लग जाती हैं तो बकाऊ सी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मनोरंजन की ओर चलते हैं और उसके बाद हम वापिस आते हैं इस बहुत ही खास जानकारी के साथ।

0: बहुत ही प्यारे से इस गीत के बाद हम एक बार फिर से जुड़ चुके हैं अपने दोस्तों के साथ रुचिका। तो मुझे लगता है अब देर ना करते हुए हमने अपनी बात को आगे बढ़ाना है, क्योंकि समय का अभाव हो जाता है बाद में और फिर हम अपने दोस्तों को बोल देते हैं कि अगली बार करेंगे ये बात। तो आधी अधूरी जानकारी भी अच्छी नहीं होती है, तो कोशिश करेंगे आज जितना ज्यादा हो सके हम अपने दोस्तों के साथ इस संदर्भ में बात करेंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने। दोस्तों एक बार फिर से बता देते हैं कि हम स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट के बारे में बात कर रहे थे और पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी कि जब कोई बच्चा गुम हो जाता है तो उसमें पुलिस की क्या कार्यवाही रहती थी, तो वो आप सभी अच्छे से जान चुके हैं। तो रूमा जी आज हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बच्चों से न जाने में या अनजाने में कोई गलती से अपराध हो जाता है, तो उसमें पुलिस की क्या भूमिका रहती है, किस तरह से उनकी कार्यवाही जो है स्टेप टू स्टेप चलती है।
0: बिल्कुल रुचिका जी, इससे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चों को हम अपराधी मानते ही नहीं है
1: जी।
0: हमेशा ही जब भी किसी बच्चे से कुछ गलती हुई है तो हमने उसको गलती ही माना है
1: जी।
0: जिस तरह से हम अपने घर में बच्चों की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं, इस कानून का भी यही उद्देश्य था कि बच्चे ने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, वो उससे गलती हुई है और बच्चों की गलती को जिस तरह से हम घर में सुधारते हैं उसी ही तरह से इस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों की गलतियों को सुधारने के लिए अलग अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए हैं। बहुत सारी इसमें संस्थाओं को एक साथ जोड़ा गया है, जिसमें जिला बाल संरक्षण इकाई है, इसके साथ साथ इसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है। और जब ये इकाइयां सब मिलकर काम करती हैं तो इन सब इकाइयों का एक ही मकसद रहता है, बच्चे को अपराधी ना मानकर उसको उपचारी माना जाता है। किसी भी गलती का निष्पादन जब किया जाता है तो उसका उपचार किया जाता है, उसको सही करने के लिए, बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास किए जाते हैं। तो बच्चे को यहाँ अपराधी ना मानकर उपचारी बोला गया है। तो पुलिस का जो रोल रहता है किसी भी बाल उपचारी के मामले में, तो जैसे ही कहीं से कोई सूचना मिलती है पुलिस को कि किसी बच्चे के द्वारा कोई अपराध हो गया है या कोई गलती हो गई है, तो जो स्थानीय पुलिस स्टेशन है, जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है या जिस भी पुलिस स्टेशन पे ये सूचना दी गई है, वो वहाँ की स्थानीय जुवेनाइल पुलिस यूनिट को सूचित करेंगे। जैसे ही जुवेनाइल पुलिस यूनिट के पास सूचना आती है तो उनका पहला काम है, अगर सामान्य अपराध है, बिल्कुल पेटी ऑफेंस जिसको बोल सकते हैं, पेटी ऑफेंस में सजा 3 साल से अधिक की होती है, अगर सामान्य अपराध है, मामूली सी लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसे मामूली सी बात के कारण अगर किसी ने कोई रिपोर्ट बच्चे के खिलाफ करवाई है, तो उसकी जो है जर्नल डायरी किया जाता है, उसको उसकी FIR दर्ज नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर किसी बच्चे ने गंभीर अपराध को अंजाम दिया है, जैसे वो पॉक्सो एक्ट के तहत है या फिर NDPCS Act के तहत है, नशा खरीद फरोख्त का मामला है
1: जी,
0: तो इस तरह के गंभीर अपराधों में और हीनियस क्राइम में FIR दर्ज की जाती है। जैसे ही बच्चे की सूचना मिलती है तो पुलिस यूनिट का ये जुवेनाइल पुलिस यूनिट का ये ड्यूटी रहती है कि वो बच्चे के अभिभावकों को सबसे पहले सूचित करते हैं। उसके बाद अभिभावकों को सूचित करने के बाद जो हमारा डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है वहाँ के प्रोबेशन ऑफिसर होते हैं, उसको बच्चे के संदर्भ में जानकारी दी जाती है और ये सब अधिकारी मिलकर उस बच्चे के केस को बारे में जो भी इंक्वायरी होती है उसमें हिस्सेदारी देते हैं, अपना अपना कार्य करते हैं। और विशेष पुलिस इकाई का दूसरा कार्य ये होता है कि वो बाल कल्याण अधिकारी को भी सूचित करता है और अपराध के बारे में तथा बच्चे के सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में जो पुलिस अधिकारी हैं वो एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इनकी तैयार की जाती है
1: जी।
0: ये हर एक बच्चे के साथ ऐसा होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमने देखा है कि जब भी किसी बच्चे के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज किया जाता है तो ये जो स्पेशल रिपोर्ट है उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट जो है उसका सामान्य व्यवहार आम पब्लिक में कैसा है, गांव पड़ोस में कैसा है, ये पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जाती है। तो वो वाली रिपोर्ट जो है वो कई मामलों में, ज्यादातर मामलों में मिसिंग होती है, क्योंकि हमारी पुलिस इकाइयों को भी कई बार इस बारे में नॉलेज नहीं होता है। तो जब भी ऐसा हो तो Form 1 के तहत, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही Form 1 है, उसमें बच्चे की सोशल इन्वेस्टिगेशन बनाई जाती है। ये सारी कार्रवाई करने के बाद 24 घंटे के अंदर बच्चे को किशोर न्याय बोर्ड के पास पेश करना होता है। जब भी किसी बच्चे से कोई अपराध हो जाएगा तो 24 आवर्स उसको किशोर न्याय बोर्ड के पास प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर बच्चे को कानूनी सहायता की जरूरत है, वैसे तो हर एक बच्चे को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है, लेकिन कुछ लोग प्राइवेट वकील करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो वकील नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में मुफ्त कानूनी सहायता के तहत जैसे ही FIR या GD दर्ज कर ली जाती है तो विधिक सहायता केंद्र को भी सूचना दी जाती है ताकि उस बच्चे को समय पर वकील या जो भी कानूनी सहायता है वो उसको मिल सके। और मानो पॉक्सो का केस है, यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी मामला है, कोई गंभीर मामला है, तो ऐसे केसेस में जो है वो बच्चे का मेडिकल करवाना जरूरी है। ये मेडिकल भी 24 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। लड़कियों के मामले में महिला डॉक्टर होनी चाहिए और लड़कों के मामले में भी उसके फैमिली के मेंबर्स जो हैं, अगर किसी लड़के के साथ भी यौन अपराध हुआ है या किसी प्रकार का कोई गंभीर अपराध हुआ है तो भी उस बच्चे को जो मेडिकल है जो उसका, वो उसके परिवार अभिभावकों या महिला डॉक्टर की देखरेख में होना जरूरी है। और कुछ एक मामलों में ज्यादातर क्या होता है कि पुलिस हर एक मामले में मेडिकल करवाती है, तो कुछ एक मामले ऐसे होते हैं सामान्य अपराध जिनको बोला जा सकता है, उनमें पुलिस को मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं होती है। पॉक्सो के केसेस में भी इस तरह का मामला आता है, अगर कोई विक्टिम है, जैसे हमने पहले भी बात करी थी जब हमने पॉक्सो के बारे में बात की थी, तो विक्टिम अगर मना कर देती है कि मुझे अपना मेडिकल नहीं करवाना है तो उसको मेडिकल करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। और ये इन सब कार्रवाइयों के बाद बच्चे को अगर रहने का कहीं कोई ठिकाना नहीं है तो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके रहने के लिए प्रबंध किया जाए और किसी भी स्थिति में बच्चे को जो है वो जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो इसके लिए बच्चों के लिए सुधार गृह है, और अगर बच्चे को टेम्परेरी शेल्टर में रखना है तो उसको ओपन शेल्टर में कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से रखा जा सकता है, जुवेनाइल बोर्ड के माध्यम से रखा जा सकता है।
1: जी बिल्कुल। तो दोस्तों आप सभी जान चुके हैं कि बच्चों को, सबसे पहली बात तो ये रुमा जी ने बताई कि बच्चों को हम अपराधी जो है वो नहीं मानते हैं या तो बोलते हैं, तो कई बार क्या होता है अक्सर बच्चों को डराने के लिए या तो उनसे गलती से कुछ अगर गलत हो भी जाता है तो उन्हें हम बार बार जो है बात बात पे सुनाते रहते हैं कि नहीं आपने ये अपराध किया है, और एक तरह से टॉर्चर जो है बच्चे को मिलता रहता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे को आगे बढ़ने से भी रोकता है और वो जो डर उसके मन में बैठ जाता है तो वो डर उसके लिए फिर उम्र भर के लिए जो है साथ में चलता रहता है, तो आगे बढ़ने में उसे मुश्किल होती है। भले ही आप अनजाने में उसे वो सब सुना रहे हैं कि वो आगे से ऐसी हरकत ना करे, हो सकता है इस बात के लिए आप बोल रहे हैं, या कई बार जानबूझकर भी बोलते हैं ना कि आगे पीछे से लोग ताने जो है बच्चों को सुनाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बच्चों की जिंदगी के साथ वो गलत जो है स्टेप ले रहे हैं,
0: क्योंकि इस समय का जो प्रभाव बच्चों के मन पर रहता है वो आजीवन उनके मन में घर कर जाता है। उनके मन में पुलिस के प्रति या अन्य संस्थाओं के प्रति जो रिस्पेक्ट या फिर जो उनसे अपेक्षाएं होती हैं, वो सब अपेक्षाएं बच्चे रखना बंद कर देती हैं। आपने देखा होगा घरों में भी अगर हम बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, दो बच्चों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो बच्चे हमारे चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमसे अपनी बातें शेयर करना बंद कर देते हैं, तो ये सब यहाँ पर भी लागू होता है। और इसीलिए शायद इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि इसको चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाए, बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाए ताकि बच्चे के साथ कुछ भी घटित हो रहा है या कुछ भी उसके साथ जाने अनजाने गलत हुआ है या उससे हो गया है तो वो एक दोस्त की भांति हमसे अपने मन की बात शेयर कर सके और दोबारा उस गलती को दोहराए नहीं।
1: बिल्कुल। और रुमा जी ने कंपैरिजन की बात की है तो ये बात बार बार आप सभी को याद रखनी है दोस्तों कि कभी भी अपने बच्चे को किसी के भी साथ या अपने ही बच्चे के साथ कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि जब कंपैरिजन बच्चों की जिंदगी में आ जाता है तो वो आपसे दूर होते जाते हैं कहीं ना कहीं, और फिर जो आप चाहते हैं कि नहीं बच्चा हमारे से हर बात शेयर करे या वो उससे कुछ गलत हो जाता है तब भी वो हमारे से बताए, तो वो फिर बातें नहीं बता पाएगा क्योंकि उसे लगेगा कि आपके लिए तो वो है ही गलत, आपके लिए तो कोई और सही है, तो वो कंपैरिजन वाली बात उसके दिमाग में चलती रहती है, जिस तरह से डर चलता रहता है उसी तरह से वो बातें चलती रहती है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि अभी हमारी बातें भी बहुत

0: तो दोस्तों, इस गीत के बाद एक बार फिर से हम वापस आ चुके हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका और अधिवक्ता
1: रूमा के साथ।
0: जी दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपनी बातचीत को भी आगे बढ़ाते हैं, जानकारी को और बढ़ाते हैं। तो रूमा जी, हम बात कर रहे थे, जब बात की थी बच्चों की हमने, तो आपने बीच में एक बात बोली थी कि हमें जरूरी नहीं है कि हर मामले में जो है बच्चे का मेडिकल जो है होता है या करवाने की जरूरत होती है, तो ऐसा क्यों, मतलब हर मामले में ऐसा जरूरी क्यों नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीजन रहता है या क्या कार्यवाही जो है वो रहती है।
1: बिल्कुल रुचिका जी, मैंने अभी कहा था कि पुलिस जो है वो 24 घंटे के अंदर अपराधी बच्चे का अपचारी का मेडिकल करवाती है
0: जी।
1: लेकिन ये भी समझना होगा कि जो मेडिकल जांच है एक वैज्ञानिक साक्ष्य है
0: जी,
1: और किसी भी अपचारी को अपराधी साबित करने में ये महत्वपूर्ण, कोई भी किसी भी प्रकार का, बच्चों के मामले की बात नहीं कर रही हूँ मैं
0: जी,
1: हर एक आपराधिक मामले में किसी भी अपराधी का जो मेडिकल होता है वो एक वैज्ञानिक साक्ष्य की तरह
0: बिल्कुल उसे जरूरी मानते हैं ना, क्योंकि जब भी कोई भी चाहे मतलब कोई भी केस हो जाए, छोटा हो बड़ा हो, तो हम पहले यही मानते हैं कि मेडिकल होना बहुत जरूरी है, उससे हमें पता चल सके।
1: बिल्कुल, और अपराधी को ये साबित करने के लिए इसकी महत्वपूर्ण ये जो भूमिका है
0: जी,
1: अपराधी को अपराधी साबित करने के लिए जो मेडिकल है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
0: जी।
1: खास तौर से जो हमारे यौन अपराध हैं, शारीरिक दुर्व्यवहार है, और बंधुआ मजदूरी में, बाल मजदूरी में, मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके मामलों में, लेकिन ये सभी बच्चों का जो है वो मेडिकल किया जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी बच्चों को ऐसी जांच की जरूरत नहीं होती है। ये एक जैसे पुलिस जो है ना हर एक मामले में जो है वो मेडिकल करवाती है, तो इसको एक नियमित जो कार्यशैली है उसके तौर पर नहीं अपनाना चाहिए
0: जी।
1: सभी बच्चों की चिकित्सीय जांच हो ये भी जरूरी नहीं है, और ये जो मेडिकल जांच है ये तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक केस में जरूरत नहीं है। अलग अलग मामले हैं, जैसे कई बार बच्चे हैं स्कूटी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाता है
0: जी,
1: इन मामलों में जरूरी हो जाता है कि कहीं वो ड्रिंक करके या कोई ड्रग्स का कंजम्पशन करके तो नहीं कर रहा है, और अगर किसी के साथ यौन अपराध हुआ है तो उस यौन अपराध की पुष्टि के लिए मेडिकल बहुत जरूरी है, कोई नशे का शिकार है या मारपीट हुई है, मारपीट के मामलों में कई बार जो है बहुत ही सीवियर गंभीर जो चोटें आ जाती हैं, तो उस अपराध को साबित करने के लिए इस तरह के हमें मेडिकल की जरूरत पड़ती है। लेकिन छोटे मोटे अपराधों में पुलिस को मेडिकल करवाने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे एक कारण ये भी रहता है कि जब भी हम किसी बच्चे को किसी भी आपराधिक मामले में अगर उसका संज्ञान लिया गया है, उसको मेडिकल के लिए लेके जाते हैं, तो वो बच्चा बहुत सारे मानसिक आघातों से गुजरता है, और उसके मन पर जो प्रभाव पड़ता है उस सबसे बचाने के लिए यहाँ कुछ एक मामलों में जरूरी नहीं है कि बच्चे का मेडिकल किया जाए
0: जी। बिल्कुल, तो कई बार जैसे कि दोस्तों रूमा जी ने कहा कि बच्चा पहले से ही घबराया होता है, पहले से ही डरा होता है, तो जैसे छोटे छोटे केसेस हैं जहाँ पे जरूरत नहीं होती है मेडिकल की, तो वहाँ पर मेडिकल जो है वो नहीं लिया जाता है। कुछ खास केसेस जैसे कि रूमा जी ने बताया कि जैसे यौन दुर्व्यवहार किया गया हो, या फिर एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर मारपीट का मामला हो, तो वहाँ पर हमें जो है मेडिकल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बिना मेडिकल के हम उस चीज को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो मेडिकल होगा तो हम उस चीज को FIR जो है एक प्रूफ के तौर पे, उस तौर पे कर सकते हैं। तो रूमा जी, ये तो हो गई हमारी मेडिकल की बात। अब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे से जैसे जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं, तो इन अपराधों के चलते अगर बच्चा जो है कई बार कानून का उल्लंघन करे, कानून में जो है किसी तरह से बाधा उत्पन्न कर दे, तो उस तरह से उस केस में जो है किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा, या पुलिस किस तरह से उसमें कार्यवाही करेगी।
1: रुचिका जी, ज्यादातर मामलों में क्या होता है, जब भी बच्चे से किसी प्रकार का कोई अपराध हो जाता है तो वो तो पहले ही डर जाते हैं, और ऐसे में वो पुलिस को कॉपरेट भी करते हैं, लेकिन डर के मारे बहुत सारी चीजों को छुपाते हैं
0: जी।
1: इसीलिए इस एक्ट के माध्यम से इसको इतना सॉफ्ट बनाया गया ताकि बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव हो। अगर बच्चा उदंड है, वो बार बार अपराध को रिपीट कर रहा है, बार बार बातों को नहीं समझ रहा है, पुलिस को भी कॉपरेट नहीं कर रहा है, इसी मकसद से इसमें पुलिस इकाई के साथ काउंसलर को जोड़ा गया जहाँ पे वो बच्चे की और परिवार की काउंसलिंग करते हैं ताकि बच्चा अपने उसके अंदर क्या चल रहा था। देखिए जब भी कोई अपराध होता है तो कुछ ना कुछ बच्चे के मन में गुबार होता है, किसी बात का गुस्सा है या कोई ना कोई अवसाद उसको घेरे हुए है। वो क्या देख रहा है, किस तरह के माहौल से वो निकल रहा है, उसने अपने आसपास क्या देखा है, ये सब सारी चीजें बच्चों के मामले में ऑब्जर्व की जाती है। क्योंकि कहते हैं ना कोई भी बच्चा अपराधी पैदा नहीं होता है। बच्चों को अपराधी बनाते हैं हमारे हालात। हमने आसपास क्या देखा, घर में क्या माहौल था, हमने बचपन से घर में अगर माता के साथ अपनी दादी के साथ उत्पीड़न होते देखा है, मारपीट होते देखी है, तो बच्चे के अंदर बचपन से ही वो भाव आने शुरू हो गए हैं कि मेरे पिता पीटते थे, दादा पीटते थे, तो ये मेरा राइट है और ये मेरा काम है तो मैं भी ऐसा करूंगा। घर में बड़े बुजुर्ग उनके सामने शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, तो बच्चे भी देखते हैं कि अच्छा ये कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज है, मैंने भी बड़ा होकर यही सब करना है। तो जैसे जैसे बच्चे होश संभालते जाते हैं उनके मन पर इन चीजों का प्रभाव पड़ता जाता है। इसी वजह से इस एक्ट को थोड़ा चाइल्ड फ्रेंडली बनाया गया। मैंने पहले भी कहा ना कि जब पुलिस किसी बच्चे का कोई भी केस दर्ज करती है तो जेजे एक्ट के तहत फॉर्म नंबर 1 में पुलिस अधिकारी जो है उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाता है। इस रिपोर्ट का मकसद यही है कि बच्चे के अंदर अगर अपराध की प्रवृत्ति आई तो कहां से आई, किस लिए आई, क्या ऐसा हो गया कि उस बच्चे ने अपराध को अंजाम दिया। तो उसके साथ साथ फॉर्म नंबर 6 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो जिला बाल संरक्षण कार्यालय में प्रोबेशन अधिकारी होता है वो भी उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अपने तौर पे करता है तैयार। वो भी उसका सराउंडिंग में देखता है, आस पड़ोस में बात करेंगे, पुलिस से बात, स्कूल में बात करेंगे, बच्चों के दोस्त, उसकी सोसाइटी कैसी है, घर का माहौल कैसा है, घर के किसी मेंबर ने कोई अपराध तो नहीं किया है, इस तरह की सारी चीजों की पुष्टि की जाती है और उसी के आधार पर जो बच्चे का समस्या है, जो भी जिसकी वजह से उसने अपराध को अंजाम दिया है, उस समस्या का निष्पादन किया जाता है, उस समस्या को खत्म करने की कोशिश की जाती है ताकि बच्चा दोबारा से इस तरह की कोई पुनरावृत्ति ना करे और बच्चे को सुधारने के लिए हर संभव से प्रयास किए जाते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा रूमा जी आपने। दोस्तों अक्सर बहुत से केसेस आपको ऐसे मिलेंगे और रूमा जी मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि बच्चे को जिस तरह का माहौल मिलता है तो वो उसी तरह से आगे बढ़ता है। अब जैसे हम बात करें संस्कृति या फिर अपनी परंपराओं की, अगर हम जो संस्कार हमारे अगर बड़े उन संस्कारों को आगे बच्चों को बताएंगे वो तभी उनमें जाएंगे, अगर वो नहीं बताएंगे तो वो नहीं जाएंगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम अगर लें कि क्या होता है कि बच्चे जैसे ही खासकर लड़कों में ये बात देखी जाती है कि या तो दादा दादी या फिर पेरेंट्स के साथ भी ऐसा कई बार होता है कि बच्चा जैसे बहुत दुआओं से पैदा होता जन्म लेता है तो वहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि इस बच्चे को चाहे जो मर्जी हो जाए एक आंच तक नहीं आनी चाहिए, है ना। तो वो एक लौतेपन का और एक बहुत ही लाड प्यार जो है कहीं ना कहीं वो भी बच्चे को गलत रास्ते पे लेके जाता है।
1: बिल्कुल ठीक बोल रही हैं रुचिका जी आप। देखो ना पहले समय में जो था संयुक्त परिवार थे
0: जी,
1: सभी के साथ हम इकट्ठा रहते थे, लेकिन आजकल का जो समय आ गया है उसमें हम लोगों के अंदर धारणा हो गई है कि माताएं खुद बच्चों को बोलती हैं दादा दादी से दूर रहना है, चाचा चाची से दूर रहना है। तो ये जो एकाकीपन हम अपने बच्चों में खुद भर रहे हैं ये भी उन बच्चों में इस तरह की विदंडता और गलत चीजों की ओर उनको धकेल रहा है। क्योंकि जब परिवार संयुक्त थे तो दादा दादी की छत्र छाया में जब परवरिश होती थी तो बच्चों का विकास बहुत अच्छा होता था, आपराधिक मामले ना के बराबर दर्ज होते थे, यौन अपराध तो कहीं भी सुनने को नहीं मिलते थे। लेकिन जब से हम एकल परिवारों की ओर बढ़े हैं तब से बच्चों के भी केसेस बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि माँ बाप कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को भूलते गए।
0: और ऐसा भी देखा गया है रूमा जी कि जैसे होता है ना कि बच्चे के पेरेंट्स अगर बहुत अच्छी जॉब में हैं, मतलब बहुत अच्छी वर्किंग में हैं, जैसे कि पुलिस में ही हैं या फिर कोर्ट में हैं या कैसे भी हैं, तो बच्चे को वहां से भी कहीं ना कहीं एक जो है सहारा मिल जाता है कि नहीं मैं कुछ भी गलत करूंगा
1: मेरे माँ बाप
0: तो मेरे माँ बाप मुझे संभाल लेंगे।
1: ये सिर्फ वकीलों और पुलिस अधिकारियों के संदर्भ में नहीं है,
0: सभी में जिनके मतलब एक बोलते हैं ना लिंकेजेस बने होते हैं परिवार के, लिंकेजेस अगर किसी के साथ है।
1: आजकल माता पिता जो है ना बच्चों की जरूरतें उनके कहने से पहले
0: पूरा कर देते हैं। मैं वही कहना चाह रही थी कि पेशेंस धैर्य जो है हम बच्चों में
1: ओवर प्रोटेक्शन जो है वो बच्चों को जितने भी मैंने अभी तक मामले देखे हैं
0: जी,
1: ओवर प्रोटेक्शन बच्चों को बहुत ही ज्यादा अपराध की ओर लेके जाती है। दूसरा जो नेग्लिजेंसी है, हम कई बार बच्चों को हर सुविधा तो दे देते हैं लेकिन उनकी और बिल्कुल बेध्यानी से उनका ध्यान नहीं रख पाते, उनका ख्याल नहीं रखते, तो ये नेग्लिजेंसी और ओवर प्रोटेक्शन ये आजकल के पेरेंट्स में आम बात है और ये चीज हमारे समाज को कहीं गर्त में लेके जा रही है।
0: बिल्कुल, और बच्चों का भविष्य आज अगर देखा जाए ना कि नशे की तरफ क्यों बढ़ रहा है, अपराधों की तरफ क्यों बढ़ रहा है, यही कुछ छोटे छोटे से रीजंस हैं जो पेरेंट्स आमतौर पर इग्नोर नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो बच्चों को थोड़ा सा समय, उन्हें ऐसा लगता है कि हम उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, उन्हें टाइम टू टाइम पैसे दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, वही उनके लिए मैटर करता है।
1: बिल्कुल, तो रुचिका जी अब गीत सुनना पड़ेगा।
0: जी बिल्कुल, तो दोस्तों बातों बातों में हम भूल जाते हैं आप सभी का मनोरंजन जो है वो भी बहुत जरूरी है, तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को और फिर से वापस आते हैं अपनी इसी बातचीत के साथ।

काश के इंसानों में भी ऐसी यारी हो पाती। ये तेरा हाथी, तू इसका साथी, तुम दोनों की जोड़ी।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं आपके साथ, तो आइए बढ़ाते हैं अपनी बातों को आगे।
1: जी बिल्कुल दोस्तों, कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान आप सभी सुन रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो जंक्शन धर्मशाला से। तो रूमा जी, हमने बात की थी आपने बीच में कि जैसे कि जब भी बच्चा कोई अपराध कर देता है, कोई भी अनजाने में उसे गलती हो जाती है, तो आपने कहा था कि 24 घंटों के अंदर जो है उसे पुलिस जो है बोर्ड के पास पेश करती है। तो ऐसा क्यों, मतलब 24 घंटों के अंदर उसे पेश करना क्यों जरूरी रहता है? और हर बच्चे को बोर्ड के पास पेश किया जाता है या फिर कुछ कुछ केसेस ऐसे रहते हैं कि बच्चे को बोर्ड के पास पेश करना होता है?
0: रुचिका जी, सीआरपी की धारा 164 के अंतर्गत कानून की जरूरतों को पूरा करने के लिए बच्चे का जो बयान है वो बहुत जरूरी होता है। उस बच्चे के साथ क्या हुआ या उस बच्चे ने ऐसा क्यों किया, ये सब सारी चीजें जानने के लिए बोर्ड के समक्ष या कोर्ट के समक्ष उस बच्चे को पेश करना जरूरी होता है। हालांकि हर मामले में सीआरपीसी की सेक्शन 124 के तहत बच्चे का जो बयान है वो दर्ज करना जरूरी नहीं है, लेकिन 164 ये कहता है कि हर एक अपराधी का बयान होना जरूरी है। लेकिन इसी की धारा 124 कहती है कि बच्चे का बयान करना जरूरी नहीं है, और इसका जो निर्णय है वो अलग अलग केसेस के आधार पर किया जाता है। कुछ एक मामले हैं जो मैंने पहले भी कहा कि सामान्य अपराध है, पेटी ऑफेंस है, उनमें बच्चे का बयान होना जरूरी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर बच्चे का बयान होना जरूरी है, जैसे हमारे डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स हैं, यौन अपराध हैं, इस तरह की जो प्रोस्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, बच्चों की तस्करी से जुड़े मैटर हैं, इन मैटर्स में जो है वो बच्चों के ना मुकरने का बाद में डर रहता है बच्चे, क्योंकि देखो बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको जिस माहौल में डाला जाए डर जाते हैं। तो जो ये यौन अपराध हैं, मानव तस्करी से जुड़े मामले हैं, नशाखोरी से जुड़े मामले हैं, इस तरह के जो मामले हैं ये बहुत ही संगीन प्रकार के अपराध हैं। और जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो अन्य भी इन बच्चों के साथ जुड़े रह सकते हैं, उनके माता पिता या अन्य, वो उनके ऊपर दबाव बना के उनको अपनी स्टेटमेंट से मुकरने के लिए उनको फोर्स कर सकते हैं। ऐसे मामलों में बच्चों का जो बयान है वो मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर दर्ज हो जाना चाहिए। और इसमें वो बच्चे आते हैं जो पीड़ित हैं, जैसे यौन अपराध से पीड़ित हैं, देह व्यापार में जिनको धकेला गया था वो बच्चे हैं, और भी जो बंधुआ मजदूर हैं, इस तरह के मामलों में जो पीड़ित हैं उनका भी बयान 24 घंटे के अंदर मैजिस्ट्रेट के पास जरूर हो जाना चाहिए, ताकि कल को वो किसी भी दबाव में आके, किसी भी लालच में आके वो मुकर ना जाए।
1: बिल्कुल सही कहा रूमा जी ने दोस्तों, क्योंकि अक्सर जब गलत हो जाता है ना, तो उस समय हमें लगता है कि हमें इसके लिए आवाज उठानी है, पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम उनके बारे में अच्छे से जान पाते हैं, तो डर के फिर हम उस कंप्लेंट को वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, बच्चे की स्टेटमेंट को बदलवाने की तैयार हो जाते हैं। तो ये जो 24 घंटों वाली स्टेटमेंट है, तो अरुमा जी ऐसा भी होता होगा ना कि बच्चा उस समय डरा हुआ होता है, तो क्या पता डर में वो ना भी बोल पाए, तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं?
0: मैंने पहले भी कहा था आपको रुचिका जी, ज्यादातर मामलों में क्या होता है, बच्चे पुलिस को देख के ही डर जाते हैं। जब आपराधिक मामला उनके ऊपर दर्ज होता है तब भी डर जाती है। इसीलिए जब भी बच्चे को मैजिस्ट्रेट के पास भी पेश करना होता है, तो प्रोबेशन ऑफिसर और सामाजिक कल्याण अधिकारी जो है वो बच्चे के साथ रहता है, बच्चे के अभिभावकों को उसके साथ रखा जाता है, ताकि बच्चा किसी भी डर की वजह से अपने बयान से ना मुकरे, या फिर बयान देने में ज्यादातर मामलों में कई बार होता है बच्चा बोल ही नहीं पाता है कोर्ट के पास को जाके, तो उसकी काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग के माध्यम से उसको समझाया जाता है, उसको एक फ्रेंडली माहौल दिया जाता है, ताकि वो अपना बयान जो है वो मैजिस्ट्रेट के पास दे सके। और इसमें जो जुविनाइल बोर्ड है वो भी बिल्कुल बच्चों के साथ पारिवारिक माहौल की तरह बिहेव करते हैं, तो ज्यादातर मामलों में बच्चे अपना बयान के पास रिकॉर्ड करवा देते हैं।
1: जी,
0: और रुचिका जी, बच्चे का ये बयान बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी केस में सुनवाई के दौरान, क्योंकि एक तरह से अगर किसी बच्चे के साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ है या किसी भी प्रकार की प्रताड़ना हुई है, हिंसा हुई है, तो उसका ये जो बयान है यही उसके केस को स्ट्रोंग बनाता है। ज्यादातर नहीं तो आपने सुना है, अक्सर लोग बोलते हैं कि कोर्ट में जाके केस खराब हो जाते हैं, अपराधी को सजा नहीं मिलती है। तो इसके पीछे यही कारण रहता है कि हम लोग उतना गंभीरता से इन मुद्दों को नहीं लेते हैं। बच्चे का ये बयान जो है वो साक्ष्य के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे ने FIR दर्ज होने के बाद या कोई भी घटना होने के बाद क्या बयान दिया, क्या उसने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखो, बच्चे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी भी मेमोरी थोड़ी वीक हो जाती है, हम भी चीजों को भूल जाते हैं। तो 24 घंटे के दौरान जब बच्चे का बयान नोट किया जाता है तो वो A to Z जो भी उसके साथ हुआ है वो सारी चीजें वो बता देता है।
1: जी, तो दोस्तों आप सभी भी जान चुके हैं। तो अब हमें ये कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है कि कई बार क्या होता है, बच्चा डर कर आपसे बता तो देता है पर फिर उसे अंदर ही अंदर वो डर भी होता है, पर उस समय उसको आप सभी के सहारे की जरूरत, यानी कि अपनों के सहारे की जरूरत रहती है। अगर आप भी पीछे हट जाएंगे तो बच्चा अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएगा और वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आप जो है, कई बार क्या होता है, दूसरों के बहकावे में आके या फिर दूसरों के डर में आके भी बच्चे को चुप करवाने की कोशिश करते हैं, उसके स्टेटमेंट को बदलवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि गलत तो गलत ही होता है, फिर वो चाहे किसी के भी साथ हो। दोस्तों तो इस बात का हमें खास ध्यान जो है वो रखने की जरूरत है। तो रोमा जी, जब भी पुलिस जो है किसी भी बच्चे को आपराधिक तौर पर संज्ञान के लिए लेती है, तो उसमें पुलिस की क्या क्या कार्यवाही रहती है, किस तरह से वो अपने कार्यवाही को आगे बढ़ाती?
0: रुचिका जी, जब भी किसी भी बच्चे के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई मामला दर्ज किया जाता है और पुलिस अधिकारी को ये ध्यान है कि जिस भी मामले में वो इंक्वायरी कर रहे हैं वो बच्चा है, तो सबसे पहला काम पुलिस का ये रहता है कि वो अपनी सामान्य जो पुलिस की यूनिफॉर्म है उसको नहीं पहनेंगे। ये ध्यान बिल्कुल रखें। जैसे हमारे गांव में भी कई बार होता है बच्चों के मामले में पुलिस यूनिफॉर्म में आ जाती है, और आपको पता है बच्चे पुलिस की वर्दी को देख के डर जाते हैं। तो ऐसे में जब भी किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज होता है तो पुलिस अधिकारी उस बच्चे की इंक्वायरी करने जब उस फील्ड में जाएंगे तो वो यूनिफॉर्म में नहीं होंगे। सबसे पहले सावधानी तो पुलिस को यही बरतनी होगी। दूसरा, उस बच्चे के साथ उसको डराएंगे नहीं। जैसे होता है, आपने सुना होगा, फिल्मों में भी हम देखते हैं कि डराया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है उसको। तो बच्चों के मामले में बच्चे के साथ बिल्कुल अभिभावक की तरह, संरक्षक की तरह बात करनी होती है। उनको साथ हम गुस्से से बात नहीं करेंगे, उनको पुलिस का डर नहीं दिखाएंगे। दूसरा, जब भी पुलिस बच्चे का बयान नोट करेगी, जब भी कोई मामला होता है तो पुलिस इंक्वायरी के दौरान लोगों के बयान नोट करती है। ऐसे में भी पुलिस जो है वो ये ध्यान रखेगी कि जो मुजरिम है, जिसने अपराध किया है, और जो पीड़ित है, उनके बीच एक गैप बना के रखा जाएगा। पीड़ित जो है, मानो यौन अपराध हुआ है किसी बच्चे के साथ और वहाँ पे पुलिस इंक्वायरी के लिए गई है, तो जो विक्टिम है उसको अपराधी के सामने नहीं रखा जाएगा, अपराधी को उसके सामने नहीं लाया जाएगा। और दूसरा, ये भी ध्यान रखा जाएगा कि विक्टिम का जो है उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, वो बयान करते समय किसी दबाव में ना हो, उसका बिल्कुल पुलिस को ध्यान रखना होगा। जो भी पुलिस अधिकारी है वो उसके साथ इस तरह से बर्ताव करेंगे, उसको पहले तो ये नहीं जताएंगे कि वो विक्टिम है, उससे कोई, क्योंकि आज देखो आपने भी सुना होगा या महसूस किया होगा कि हम पीड़ित को ही और
1: दोषी है,
0: बिल्कुल उसी को और पीड़ा पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे पुलिस बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से उसको अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उसके साथ बर्ताव करेंगे। दूसरा, जब भी उसका मेडिकल ही करवाना होगा तब भी पुलिस अधिकारी या कांस्टेबल जो भी उनके साथ रहता है वो यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म तो पुलिस की बच्चों के सामने आनी ही नहीं चाहिए
1: जी।
0: और एकदम से बच्चे का जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लेना जरूरी है इसमें, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र के बिना कैसे सिद्ध होगा बच्चा है, क्योंकि कई बार हमें दिखते कम है और उम्र उनकी अधिक होती है। और ऐसी सिचुएशन जहाँ पे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, कई तरह के लोग ऐसे हैं अभी भी हमारे यहाँ पे जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, बाहरी राज्यों से आए हैं, तो ऐसे में बच्चे की उम्र जांचने के लिए अस्पताल में जाके उम्र का एक टेस्ट किया जाता है, ऑक्सीफिकेशन टेस्ट, वो करवाना चाहिए। उससे क्या होता है कि बच्चे की उम्र का सही निर्धारण हो जाता है, और बच्चे के साथ लिंग के आधार पर कोई भेदभाव वहाँ पे नहीं होना चाहिए। लड़का या लड़की है उसके साथ विशेष जाति को लेके किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें पुलिस को ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा, अगर बच्चे को उन्होंने हिरासत में लिया है, उसको अपने पास रखने वाला कोई नहीं है, अभिभावकों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से छोड़ दिया है। ज्यादातर मामलों में होता है जब किसी से अपराध हो जाता है तो पेरेंट्स गुस्से में छोड़ देते हैं, तो उसके रखने का व्यवस्था उसको कहाँ रखा जाएगा, ये ध्यान रखा जाता है। तो बिल्कुल पुलिस इस चीज का ध्यान रखेगी। और रात के समय बच्चे को अरेस्ट नहीं किया जाएगा, पहले भी मैंने बताया था, सुबह 7 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद किसी भी बच्चे को थाने में नहीं बुलाया जाएगा। बच्चे को वैसे भी थाने में बुला के बार बार नहीं बुलाया जाएगा, अगर उसका बयान नोट करना है तो उसके घर में जाके अभिभावकों की मौजूदगी में होना चाहिए ये सब।
1: जी दोस्तों, तो आप सभी को बहुत अच्छे से रूमा जी ने बताया है कि बच्चों के साथ किस तरह से सावधानियां जो है पुलिस को भी बरतने की जरूरत रहती है। ऐसा नहीं है, होते हैं ना कि कई बार रोग में आके हम अनजाने में ही सही जल्दबाजी में हड़बड़ी में जो है बच्चे को डरा देते हैं, उन पे चिल्ला देते हैं या उन्हें डांट डपट देते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो हम कभी भी जो है एक तरह से उन्हें ब्लेम एकदम से नहीं करेंगे, पहले पूरी बात को उन्हें जो है, सबसे पहली बात तो यही, बच्चे को पहले आप कंफर्टेबल जोन पे लेके आइए, तभी वो आपको अपनी बात बताएगा। जो भी उससे अपराध हुआ है, अनजाने में गलती हुई है, तो वो तभी खुलकर बता पाएगा, क्योंकि जब वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा। ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों।
0: बिल्कुल, और जब भी बच्चे को अरेस्ट किया जाता है ना, तो एक चीज और भी ध्यान रखनी होगी, अगर चाहे उसने बिल्कुल ही जघन्य अपराध किया है, ऐसे में भी उसको हथकड़ी या जंजीर या किसी भी अन्य प्रकार का वो उसमें उसको बांध के नहीं ले जाया जाएगा। और अगर एक और चीज, कई बार ऐसे होता है ना, हमारे यहाँ बाहरी राज्यों से भी बहुत सारे लोग आते हैं
1: जी,
0: या हमारा ही कोई व्यक्ति बाहर गया है, वहाँ की भाषा नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे में पुलिस को दुभाषिये की भी मदद लेनी चाहिए ताकि उस बच्चे की बात को समझ सके। ये दुभाषी का रोल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा हमारी भाषा ही नहीं समझ रहा है, वो अपनी बात ही हमसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, हमें नहीं बता पा रहा है, तो फिर उस केस को सॉल्व करने में, उसकी तह तक जाने में पुलिस को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसे में दुभाषिये का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस बच्चे की जो लैंग्वेज है, उसका जानकार अगर कोई भी व्यक्ति हो, तो उसके माध्यम से उस बच्चे के साथ बात की जानी चाहिए। एक और चीज इसमें मैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चे का कोई भी बयान अगर नोट किया जाता है तो उसके ऊपर हस्ताक्षर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि 18 साल से नीचे तो वैसे भी आपको पता है हस्ताक्षर जो है जरूरी नहीं है, है ना
1: जी। जी दोस्तों, तो आज बहुत ही खास बातचीत हमने आप सभी के साथ की है, खासकर बच्चों से जुड़ी हुई बातचीत। तो बच्चों से अगर कोई अपराध हो जाता है, तो अब हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप उनका साथ देंगे, उन्हें किस तरह से जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है या उस अपराध से बाहर निकालना है, उन्हें कैसे सपोर्ट करना है, ये आप सभी अच्छे से जान चुके होंगे, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो है आपको एक एक जानकारी आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश की है। और यही उम्मीद करते हैं कि उस जानकारी के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपके सामने ऐसा कोई केस देखने को मिलता है या आप ऐसे केस में कहीं फंसते हुए हैं, किसी भी तरह से आपके सामने ऐसी चीजें आती हैं, तो अपने आप को पीछे नहीं हटाना है, क्योंकि अक्सर हम ऐसे जो पुण्य वाले काम होते हैं ना, उससे खुद को पीछे हटाते हैं और गलत कामों में बढ़ावा दे देते हैं।
0: बिल्कुल, वैसे भी रुचिका कहते हैं ना कि हम लोग दूसरों के घर में आग लगती है तो तमाशा देखते हैं
1: जी।
0: तमाशा ही ना बनके अगर हम उस आग को बुझाने में सबकी मदद करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो आग हमारे घरों तक नहीं आएगी। और बच्चे तो सबके अपने होते हैं, और बच्चों के हित में जो भी हमसे बन पड़े वो हमें जरूर करना चाहिए। और कई बार रुचिका जी, मैंने ऐसा देखा है कि हम अपने बच्चों को तो आग बढ़ते देखना चाहती हैं,

0: लेके हैं या बहते पानी को लेके हैं। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है आप सबसे कि अगर सच में इस तरह की कोई बात है आपकी साथ, पड़ोसी के टकराव के साथ तकरार है या कोई भी विवाद है, तो उस विवाद को बैठ के सॉल्व करें। किसी बच्चे के भविष्य को उजाड़ने के लिए इस तरह का कोई भी गलत रास्ता ना अपनाएं, ताकि वो बच्चा भी आपके बच्चे की तरह अगर तरक्की करेगा तो देश का मान ही बढ़ेगा।
1: बिल्कुल सही कहा है रूमा जी ने दोस्तों, क्योंकि अक्सर हम पता क्या करते हैं कि हमारे साथ अगर किसी ने गलत किया ना, तो हम वेट कर रहे होते हैं कि इनके बच्चे जब बड़े होंगे, इस स्टेज पे आएंगे ना, तो हम इन्हें भी ऐसे बिगाड़ देंगे। तो ये जो सोच है हमें कहीं ना कहीं एक पीछे की ओर लेके जाती है, एक गलत सोच की तरफ लेके जाती है और एक बच्चे की पूरी जिंदगी को खराब कर देती है। तो ऐसी सोच हमें अपने दिमाग में नहीं लेके आनी है, बिल्कुल भी नहीं लेके आनी है, बल्कि जितना हो सके बच्चों के भविष्य में आगे बढ़ने में उनकी हेल्प करिए, उनका सपोर्ट बनिए।
0: बिल्कुल, और बच्चों की भावनाओं को समझिए, उनको एक सही दिशा दीजिए, उनके सामने खुद भी शालीनता का और प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, ताकि वो भी हमारे ही व्यवहार से अपना व्यवहार सीखे और सबके साथ एक अच्छा व्यवहार करते हुए जिम्मेदार नागरिक की तरह देश को अपना योगदान दे।
1: जी दोस्तों, तो अब इन्हीं शब्दों के साथ समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि समय कैसे निकल जाता है, बातों में पता नहीं चलता है। तो अब दीजिए अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका को अलविदा और रूमा गुलेरिया जी को। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नई बातचीत के साथ, एक नई जानकारी के साथ।
0: तब तक के लिए नमस्कार।

0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सीय शिक्षा में एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर सरमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि

तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रुपए नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़क कर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रेडियो गुंजन पर पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से।

0: और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
1: समझ गए सर।
0: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
2: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है, इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने। नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
3: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
4: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
5: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
6: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समां हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।

सत्यो रेडियो कुंचन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते पंजाबी गीतां दा प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो। तो मैं हां तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। तो मेरे नाल तुसी सुन रहे हो ये प्रोग्राम। तो आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला पंजाबी गीत।

0: श्रोते हो रेडियो गुंजन धर्मशाला, तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।
1: वक्त तेरे तो जालमा मैं होना नहीं सी,

श्रोतियों रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

सोहनी सोहनी पंजाबी गीत तुसी सुन रहे हो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया 91.2 MHz ते तुसी एदां ही बने रहो साडे नाल ते प्रोग्राम एंजॉय करदे रहो पंजाबी गीत।

91.2 MHz रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल तहे खोर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।

श्रोताओ, रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170917018117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: अरे, सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

नमस्ते नमस्कार 91.2 मेगाहर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने में शशि हाजिर हुई हो कार्यक्रम लेकरी माटी दी महक ताशुताओं माटी दी महक कार्यक्रम च तो हाँ सारे दा ही स्वागत है कने तो हाँ सारी ही ठीक ठाक होने न कने अपना जेड़ा कामकार है से जरूर करा दियो ने क्योंकि कामकार करना भी यहाँ वास्ते जरूरी है कने तुह सारे जो ही पता है कि इस कार्यक्रम का जेड़ा सफर है से तुह तक रहिंदा है 2 से 3 बजे तक तो जल्दी जल्दी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़िया इंतजार जेड़ा तुह जो लग्या था कि कालू दिया 2 बजते न कने कालू दिया हाँ इस कार्यक्रम कने जुड़ते न ता जुड़ने वास्ते जेड़ा हाँ दा नंबर है पहले तो नंबर तुह तक पहुँचाते न फिर ही बाकी जेड़ा गल्ला न सभी तुह तक पहुँचाते न नंबर है 701-811-7091 तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा तो शो तो 2:03 कार्यक्रम चो न कने आहे जेड़ा पहली शो तो अह कने जुड़ चुके हो न कर दें तिना कने गल बात हेलो नमस्ते जी स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है न जी तुह कुथु

श्रोताओं तो सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत प्यारी दी शुरुआत मौसम दी ओर अगर हाँ अपनी जड़ा नज़र है से लगा न तो जरूर मौसम जड़ा है से अपना बदलाव कुथी ना कुथी रखा दे। मई महीने का जड़ा ये दौर चलिया कने बारिश का दौर भी मई महीने च जरूर अहां जो दिखने जो मिला दै कने जिड़ा कि मई दे महीने च अहां बोलते हैं या सुनते हैं कि गर्मी आला ज़्यादा गर्मी आला जिड़ा महीना है जो बोलते हैं, पर कई जगह जिड़ा से बारिश दा अलर्ट या जिड़ा बिजली है या गर्ज है या तूफान है कुथी ना कुथी तुहां जिड़ा से शामी टाइम तुहां जो जिड़ा से दिखने जो मिला है। मौसम दा अलग ही जिड़ा अंदाज है। वैसे तो गर्मी दा जिड़ा मौसम है से कुथी ना कुथी ठंडक च जरूर बदली है। गर्मियां दा जिड़ा मौसम है से यहाँ जो ठंड च या हाँ बोली सकते कि नॉर्मल जिड़ा ठंड है से यहाँ जो दिखने जो मिला दी कने गर्मी दा जिड़ा एहसास है से बिल्कुल ख़त्म है। तो बारिश दा जिड़ा अलर्ट है से फिर ते 15 तक जिड़ा से दस्या है कि बारिश कने आंधी तूफान जिड़े से बिजली गिरने दी जिड़ा संभावना है से जताई हुए। तो थोड़ा देर तो हाँ अपना जिड़ा ख्याल है से ज़रूर रखना है कने शिमला हमीरपुर चंबा कांगड़ा बिलासपुर कने जिड़ा ऊना जिले न तिना च आधी रात जिड़े से तेज हवाएं चलने दी जिड़ा संभावना है से मौसम विभाग ने जताई है। तो हाँ जिड़ा अपना ख्याल है से ज़रूर रखना है क्योंकि अहाँ चलू मौसम दे हिसाब ने अपना जिड़ा ख्याल है से रख देना तो बड़ी अच्छी गल है। कर मौसम अपना जिड़ा रूप है से ज़रूर थोड़ी देर बाद चेंज करा था कभी धूप है तो कभी छाँव है तो मौसम के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते थोड़ा देर ज़रूरी है कने मेरे वास्ते भी तुहंदे हिसाब ने चलना जरूरी है। थोड़ा दे आगे बढ़ते न कने अगली जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

कानवी दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए है तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला दर्शोताओं तुम सारे सुनिया ये प्यारा दया गीत प्यारा दया भजन। इस भजन की फरमाइश अह जो आई हुए सिद्धवाड़ी ते कने तिना दा ना वे अशोक कुमार जी तिना तक अह ये गीत पहुँचे आ कने तुम सारे भी इंजॉय किया। दर्शोताओं भजन जड़ा से बड़ा प्यारा था कि खानियां बंदियां दो रोटियां। दर्शोताओं जड़ा भजन हैं सभी अह जो जरूर कुछ ना कुछ जड़ा से सिखाई करी जानते हैं, क्योंकि अगर अह सीखते न ताई हर जीवन च हर कोई यही सोचता है कि अह मेहनत करनी है, अह अपने जीवन जो बेहतर बनाना है, पर हर कुसी की अपनी अपनी सोच होंगी ना। अगर अह अच्छा सोचते न ताई अह अपनी जिंदगी जो बेहतर जड़ा से बनाई पाते हैं, तो बेहतर तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफ़र करने अह करने जुड़ी सकते कने अह करने गलबात जड़ा से जरूर करी सकते। दर्शोताओं जुड़ने वास्ते जड़ा हमारा नंबर है, पहले तो सारे नंबर जड़ा से नोट करी लिया। नंबर है 7011811709 1। तो इस नंबर पर कॉल करा या टेक्स्ट मैसेज करा या व्हाट्सएप मैसेज करा। तो श्रोताओं गल हाँ लगाई थी कि मौसम जड़ा से अपना कुथी ना कुथी बदलाव जड़ा से करा दे, तो मौसम दी भी गलती नहीं है, क्योंकि इंसान जड़ा से हर तरफ जड़ा से अपना ही फायदा दिखता है, क्योंकि अह हमेशा अपना फायदा दिखने के चक्कर च कुथी ना कुथी अह प्रकृति जो भी नुकसान करा दे या हाँ प्यार भावना जड़ा से बिल्कुल ख़त्म जड़ा से हुई हो, चाहे से फैमिली की गल करना चाहे से कोई भी अहदा रिश्ता है, प्यार भावना जड़ा से अह जो बिल्कुल दिखने जो नहीं मिला दी, तो मौसम भी अपनी करवट जड़ा से बदला दा। मौसम का भी अहाँ कोई जड़ा हिसाब वैसे नहीं लगाई सकते, तो अगर अह अपनी प्रकृति की रक्षा कर देन तो प्रकृति अहाँ की रक्षा जड़ा से जरूर कर दी है। अगली जड़ा

0: से तुहें क्या लगता कि कितना की अपना बदलाव जेड़े से लै दे?
1: लगा है बस दो चार जड़ी गर्मियां दिन पे हैं, बाकी बदलाव ही रखा
0: जी, तो पहले थोड़ी नहीं ना होता था
1: ना, पहले नहीं होता था ना,
0: जी।
1: तो इस टाइम इन बरखा होंगे गल
0: जी
1: बरसात चाहिए
0: जी
1: तालू बंद हो जानी
0: जी तालू बरखा ही नहीं होनी
1: ये आदमी है नहीं है कितना कराया हर कुछ ना,
0: जी।
1: जिस तरीके का आदमी हुई है उसी तरीके का परमात्मा भी है,
0: जी
1: जिन्हें आहा करना से आहा फल भोगना पड़ना ना।
0: जी सही है ना कि कर्म का लेखा जोखा तो इतो ही भरना पड़ा
1: हाँ
0: जी। ता आहा जो हमेशा प्रकृति दी रक्षा जेड़े से करना चाहिए, या नदी नाले न या कोई भी है, आहा कुछ ना कुछ अपना फायदा जरूर दिखा देना जी।
1: आजकल बंदा अपना फायदा देखता, बाकी नहीं देखता कुछ भी, तो
0: जी जी
1: अपना चाहिए
0: जी ता जो हमेशा हर चीज दिखी करी चलना चाहिए थी ना जी।
1: पहले वाले तो जरूर चलते थे ना, यहाँ
0: जी
1: कहा नहीं होता था ना ऐसा कुछ,
0: जी इसे सारे दे बारे च सोचते थे ना जी।
1: खड्डा नाले च घराट बनाने थे ना, घराटे जाता पीना,
0: जी
1: अजकल से घराट तो बिल्कुल ही बंद हो गई
0: जी ता है तो दिखने भी नहीं मिला दे कराट होना।
1: है। दूसरी गल क्या है, कुल्ला कुल्ला के लोग
0: जी
1: जमींदार बनाना जानते थे,
0: जी जी
1: नहीं जा रहे अजकल,
0: जी
1: क्योंकि सब उन्हें टाइम नहीं है,
0: जी
1: लेकिन कम जेड़ा है जो असली काम है ना, तो इस वास्ते टाइम नहीं आने वाला।
0: जी असली जेड़ा काम है उस वास्ते टाइम नहीं है, कने जिना मोबाइल फोन दिया हाँ गल हमेशा करते रहते ना, तो दीदी वास्ते यहाँ लसमय जेड़ा ऐसे है
1: सर सवेरे अगर 9 बजे से ना करना शुरू करती, टिच टिच तो सर 5 बजे
0: जी जी
1: जा आने उठना से ना
0: जी
1: ना,
0: जी
1: तो इस
0: जी
1: करके थोड़ा ये फर्क था, परमात्मा बोलता भी नहीं तुम्हें चलना, चलो मैं मिटवा सब भी चलना,
0: जी जी चलो, पर मौसम बड़ा ही ज्यादा कुछ खटपटा रहा
1: हाँ
0: हुई है ना जी।
1: बिल्कुल हाँ,
0: जी
1: जमीन पानी पानी है
0: जी जी पानी पानी है ना, हाँ टाइम भी लग गया लसने पुटने दा, फिर
1: हाँ
0: बाकी फसलां जेड़ा लगाई हुए प्याज तेदा टाइम लग गया, ता कुछ ना कुछ फसलां जो भी नुकसान होता ना जी।
1: अल्ली कणका खड़ोती है बने
0: जी अली कणका भी है, उपली साइड तो ज्यादा है ना जी, निचली साइड तो चलो बेले हो पर उपली उपली साइड तो अली बढ़िया ज्यादा है ना।
1: ये आंदे यहाँ सिर्फ बाड़िया वास्ते वास्ते थे, थले थले सारे बढ़ने पे ही बंदा
0: जी अच्छा इस साइड भी है, अली सिद्ध बाड़िया च भी है ना
1: बढ़ने पे।
0: जी। ताली ता सही है कि मौसम फिर ते बरखा दसी हो है 15 तरीका तक ने
1: हाँ 3-4 दिन लगातार ही है,
0: जी, पर तूफान कने बिजली जेड़ा गरजा ही तीसा था फिर ज्यादा डर रहता ना जी।
1: इसलिए नुकसान हुआ है ना,
0: जी जी तीदी ने भी बड़ा ज्यादा नुकसान होता
1: हाँ कुछ पेड़ गिरी या
0: जी
1: कुछ हाँ
0: जी तो हाँ से पालमपुर वाली न्यूज भी सुनी होनी है से मुंडुए दी
1: पेड़
0: जेड़ा जी
1: गिरी
0: जी जी बिजलियाँ ठीक करना गए थे पर
1: करंट लगी है तो
0: जी जी ता देखो अगर हाँ कोई भी काम करते ना तो हाँ जो काम भी पूरी सावधानियाँ ने करना चाहिए, कने जेड़ा काम करवा देना तिना जो भी जालू पता है कि कोई काम करा दे तो बिजली जेड़े ऐसे उन्हें जो बंद ही रखनी चाहिए थी ना
1: कोई
0: जी।
1: गलती हुई जो, क्योंकि
0: जी जी चलो
1: वो बंदा कराएगा नहीं उन्हें मेरे घर छड़ी थी,
0: जी, पर गलती कुछ ना कुछ भारी पे ही ना जी,
1: हाँ पारी बिल्कुल
0: कुसी दे घरे दा चिराग जड़े से बुझी है ना जी।
1: हाँ
0: जी तो मेघनाथ जी आज तो कुंतिया गीत सुनना पसंद करके
1: नागे सुनाई दिया, नाग मंदिर गए
0: जी जी
1: थे और आरा चढ़ाई आए
0: जी अच्छा और आरा जड़े ऐसे चढ़ाया है तो हाँ भी नवा लगाई ले तो हाँ लगाना है
1: लगाना ना, आज चढ़ाई आए तो लगाई लेंगे ना,
0: जी अच्छा
1: हाँ तो इस करके नागे का सुनाई दिल
0: जी जी जरूर जी
1: हाँ जी,
0: जी धन्यवाद ते बड़ा बड़ा धन्यवाद जी तुहंदा
1: बहुत धन्यवाद थोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी। ਤਾਂ ਸ਼ੁਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਦੋਸਤ ਸ਼ੀਕ।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तो हाँ सारियां दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देना अपनी रेडियो दो शशि करने फिर ते हाँ कार्यक्रम च जिड़ा अपनी गल बात है तिहा जो ले करी तो हाँ तक पहुंची हो न कने तो हाँ मौसम दे हिसाब ने अपना जिड़ा ख्याल है से जरूर रखा दे उने न मौसम दे हिसाब ने चलना भी यहाँ वास्ते थोड़ा देया जरूरी है थोड़ा क्या ज़्यादा ही जरूरी है। मौसम दे अनुसार अहाँ चलते न तो अहाँ अपनी सेहत जो कुछ ना कुछ बेहतर जड़ा से पाते न क्योंकि कई बार अहाँ ये सोचते न कि थोड़ी देर गर्मी है या थोड़ी देर ठंड है तो अहाँ ज़्यादा तो हाँ यही कर दे कि अगर ठंड का मौसम है या गर्मी का मौसम एकदम पे आता है तो हाँ जेड़ा फ्रिज का पानी है या बर्फ जड़ा से खाना शुरू करी देने से अहाँ जो कुछ ना कुछ नुकसान जड़ा से जरूर देख रही जाता है। सर्दी जुकाम तो अहाँ हमेशा चलिया रहता बुखार भी अहाँ दिखने जो मिलता फिर भी अहाँ थोड़ा देर लापरवाह होना जड़ा से शुरू करी दे पर ये लापरवाही यहाँ जो कुछ ना कुछ नुकसान जड़ा इसे देख रही जाती है तो अपना जड़ा ख्याल है इसे तो हाँ फ्री से रखना है क्योंकि मौसम जड़ा इसे अपनी करवट जरूर बदला रहा है तो मौसम के अनुसार तो हाँ फ्री से जड़ा मौसम है तीते अनुसार तो हाँ चलना है क्योंकि मौसम अहाँ जो बार बार जड़ा दसदा रहता है कि किस प्रकार मौसम जड़ा इसे रहना है तो हाँ अगर मौसम के अनुसार चलते न तो जरूर तो हाँ खुद जो ठीक जड़ा से रखी पाते न तो फिर तो हाँ थोड़ा दे अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न तो हाँ सारी भी इसा फरमाइशा जो इंजॉय करा कने इन्हें ही सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने पंदी।

दर्शकों तो सारे ने सुनिया ये प्यारा दिया भजन प्यारी दी फरमाइश। इस भजन की फरमाइश आह जो आई हुए मेघनाथ जी दी कने से रहने वाले ने दाड़ी ते तिना तक आह ये भजन पहुँचाया कने जिड़ा अजकने दिने दी अगर आह गल करिए 12 मई 2026 कने मंगलवार का ये दिन तो जेड़े इसे इंजॉय करा दे उन्हें कने मौसम की ओर अगर आह अपना ध्यान जेड़ा से दे देन कने जेड़ा अधिकतम तापमान जेड़ा रहने आने लगभग 18 डिग्री सेल्सियस कने जेड़ा न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जेड़ा से है। स्थिति यानी कि दोपहर का समय है कने बारिश जेड़ा होने की संभावना 35 से 50% जेड़े से है कने शाम दे समय जेड़े से मौसम साफ रहने की उम्मीद जेड़े से जताई हुए ता श्रोतो मौसम के अनुसार चला कने मौसम के अनुसार अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा क्योंकि मौसम के हिसाब ने चलना जरूरी है क्योंकि हाँ अपनी सेहत जो कुथी ना कुथी नज़रअंदाज जड़े से जरूर कर देना। एकदम गर्मी पे आती है तहाँ जड़े से काम कर देना या कुथी बाहर काम ते होंदे ना या कुथी घूमना गए होंदे ना या कोई भी अपना काम करी करी होंदे ना तहाँ जल्दी जल्दी क्या कर दे तो हाँ सारे जो पता है कि जल्दी जल्दी यहाँ पहले नहाने का काम कर दे कने फिर उसके बाद जेड़ा मन करता कि ठंडी ठंडी हवा जेड़े से यहाँ जो मिली हैं चाहे से पंखे दी होवे चाहे से एसी दी होवे यहाँ सोचते कि यहाँ जो मिली हैं यहाँ जो थोड़ी जी राहत है से ज़रूर मिली है। पर राहत तो ज़रूर यहाँ जो मिली आती है पर ये राहत ही यहाँ जो कुथी ना कुथी नुकसान जेड़े से ज़रूर दे करी जाती है। थोड़ा देर सबर करन फिर ही जड़े से थोड़ा देर रेस्ट करन कने एकदम जड़े से पंखे दी हवा या एसी दी हवा जड़े से ना लैन कने वैसे भी मौसम इस प्रकार है कि एसी कने पंखे दी जड़ा ज़रूरत है से वैसे नहीं है पर चलो अगर है भी तो मौसम के अनुसार चलना भी यहाँ वास्ते थोड़ा देर ज़रूरी है। फिर तो यहाँ थोड़ा देर अगे बढ़ते न कने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देन तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर करने जुड़ी सकते कने हाँ करने गल बात जड़े से जरूर करी सकते।

कानवी दशमलव 2 MHz पर ए है तुहां सारे दा अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला कनेसी सोगी तुहां जिड़ा कार्यक्रम सुना देन से सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने। इस कार्यक्रम दा जिड़ा समय तुहां तक रहिंदा है से रहिंदा है 2 ते 3 बजे तक। कने तुहां सारे भी इस कार्यक्रम दे सफर कन्ने जुड़े होने न कन्ने अपना जेड़ा माटी दी मेह कार्यक्रम तुहां सुना देने न कने हाँ जेड़ा अपनी गलबात तुहां तक पहुँचा देन कने तुहां गलबात उपर भी जरूर जेड़ा गौर है से करा देने न। मौसम जेड़ा से अपना बदलाव लै दे मौसम दे अनुसार अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी यहाँ वास्ते जरूरी है। हर टाइम अह यही बोलते हैं कि मौसम के अनुसार चलना जरूरी है पर समय अनुसार पानी पीना भी यहाँ वास्ते कितना ज़्यादा ज़रूरी है तो हम सारे ही पता है। अगर अहाँ समय के अनुसार पानी पीते रहते न तो अहाँ अपनी सेहत जो थोड़ा जहा फिट पाते न व्यायाम अह करते न तो अहाँ की जो सेहत है से और भी बेहतर रहती है। कने अज के दौर की अगर अहाँ गल करिए तो कुछ ना कुछ अहाँ ज़्यादा जिड़ा उसमें है से मोबाइल फोन च लगा दे कने इक्की जगह जिड़ा से अहाँ चाहे से रील्स स्क्रॉल करा देन चाहे से अहाँ वीडियो गेम खेला देन या मोबाइल फोन च अहाँ अपना ज़्यादा समय लगा देन चाहे से बड़े न चाहे से छोटे न हर कोई मोबाइल फोन च इतना ज़्यादा बिजी है कि अहाँ अपने कुछ ना कुछ स्वास्थ्य जो भी नज़रअंदाज जिड़े से करी देन। छोटे बच्चे न से अगर खाना खा देन तमी से अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करा देन तिना जो ये पता नहीं है कि यहाँ खाना खा देन कि यहाँ मोबाइल फ़ोन जिड़े से चला देन। अगर हाँ खाना खा देन तो अहाँ का जरा सारा ध्यान मोबाइल फोन की ओर है कने अहाँ प्रॉपर तरीके ने से खाना भी नहीं खाई पा दे कने अपने स्वास्थ्य जो फिट भी नहीं रखी पा दे चाहे छोटे बच्चे की गल करना चाहे कोई भी है युवा पीढ़ी की गल करना हर कोई सारे ही जड़ान से बिजी हैं। अगर हाँ बस ट्रैवल करा देन तभी यहाँ हेडफोन जड़े लगाई करी ट्रैवल करा देन ठीक है अच्छा है पर अपने आसपास भी थोड़ा दिया पता होना हाँ जो ज़रूरी है थोड़ा दिया इस चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है यहाँ वास्ते। अगर अहाँ कोई भी काम करा दे ना तो अहाँ सोचा दे कि यहाँ पहले मोबाइल फ़ोन जो समय दे लेंदे न फिर यहाँ अपने बाकी काम कर देना तो अपने स्वास्थ्य ऊपर भी तो ख्याल रखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर अहाँ जिड़े से घरे का बनिया खाना अवॉइड कर दे कने बारा का खाना जिड़े से अहाँ जो पसंद होंदा बच्चे तो ज़्यादातर बारा का खाना ही खाना पसंद करते पर जितना घरे का बनिया खाना अहाँ वास्ते बेस्ट है उतना जिड़ा बारा का खाना है से अहाँ वास्ते बेस्ट नहीं है। तो हाँ कई बार दिखते होने कि अगर अहाँ घरे का बनिया खाना खाते न तो अहाँ जो अलग ही जिड़ा सुकून है से मिलता है कने जिड़ा फास्ट फ्रूट है से कुछ ना कुछ अहाँ की सेहत जो नुकसान जिड़ा है से जरूर पहुँचाता है। तो श्रोताओ थोड़ा दिया फिर तो अहाँ अगे बढ़ना है कने अगली जिड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचा देना।

तो इस भजन की फरमाई शाहजुआई वे चमंडा बड़ोई ते कने तिना दा ना वे मीरा जी। मीरा जी तक अहां यह भजन पहुँचाया कने तुहां सारियां भी इंजॉय किया। अगली जेड़ा फरमाइश है सभी तुहां तक पहुँचाण दे न समय दे अनुसार। दर्शो तो इस गीत की फरमाइश शाह तक पहुँची हुए वट्सएप के थ्रू कने तिना दा ना वे पवना जी कने सरैने वाले न कांगड़े त।

अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी रेडियो दोस्त शशि कन्ने। इस कार्यक्रम का जरा सफर तुह तक रहा है 2-3 बजे तक। समय जरा इस हल थोड़ा जहा ही है कन्ने समय अहां जोन बोला था कि तुह अनुमति जरा इसे जरूर ले लिया कने तुह सारे प्यारा दया गीत सुनया जीना कांगड़े का। श्रोताओं तुह सारे भी चाहते हैं कि जीना कांगड़े का अच्छा होए तो थोड़ा जहा अपनी प्रकृति का जरा ख्याल है इसे जरूर रखा कने अपना जरा ख्याल है सभी रखा कने अपने गाँव अपने शहर का भी जरा ख्याल है इसे तुहदा ही काम है रखना कने अपना ख्याल भी रखा कने अपनी रेडियो दोस्त शशि जो दिया अनुमति कने हमेशा खुश रहा खुश रहना भी तुहदा ही काम है कने अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गुनगुनाते रहा।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे
2: कर्तव्य?
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

0: नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा क्या नया सो चल रही। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा। क्या हाल चाल नहीं श्रोता तुंदे, उम्मीद करना हो तुंदे हाल चाल बिल्कुल ठीक भूणे खरे भूणे और अपने घरे तो है सब हस्ट पुस्ट और तंदुरुस्त भूणे हिन और सभी मोटे रह सभी सियाने रह सभी होने वाले रह के आसो तहे दिल था स्वागत करनो हार्दिक अभिनंदन करनो हाँ। अगर हूँ कर दिन रेडी गुंजन तो जरूर कॉल करा श्रोता हूँ अपने इस नंबर मंच नंबर है तुम्हारा अपना हाँ 7088879 पर नंबर आक मौके फिर आऊँ तू हो गए शेयर करनो हाँ साझा करनो हाँ 7088879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल कर करी अपना पसंदीदा गीत की ऐसा होनी सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी है होगी साझा कर सकते हैं। लेकिन यह गल खास ख्याल रहे खास ध्यान रहे कि जानकारी की ऐसा साझा करने लायक जरूर बुआ जानकारी किया सो मनु होगी दसने लायक किया श्रोताओं सो जरूर बुआ है ना। और वैसे भी बहुत सारे श्रोता कहना सो आजकल क्योंकि चुनाव चल रहे हैं तो बहुत सारे श्रोता तड़ी भी बिजी है ना अपने अपने पार्टी अपने अपने पार्टी जो लेकर ही किया तो तस किनारे भी हिंद श्रोता कहन सो बिजी हैं और प्रचार प्रसार की सो बड़ी जोरों शोरों थों की सो चल रहा था। आइए जी कार्यक्रम मंच सभी वाले तो धर्मशाला का मौसम दस ही लेंदे इस समय धर्मशाला का मौसम की 120 डिग्री सेल्सियस रे आसपास है। शोतो नमी की गल करूँ जती अंग्रेजी में ह्यूमिडिटी बलते तो 45% रे आसपास है। अलग ही बात फिर बरखा की सो बछूरे थे श्रोतों और रात फिर मौसम किया सो खराब चूरत हो बरखा के सो बछूरे थे लेकिन फर्क थोड़ा करी कणकों की असो थोड़ा करना आई थिंक ज़्यादा की असो उपयोग करता हा। तो चलिए उम्मीद है कि खवी धूप लगा और इन श्रोतागण पहले श्रोतागण अचू की किया सो कनेक्टेड नहीं ने और ये थोड़ा करी टेक्निकल इशू की श्रोताओं सो बछूरत हो तेरी वजह तो इन श्रोतागण की असो असू की कनेक्ट ना बछूरे थी है ना। तो चलिए जी कार्यक्रम जो आगू बढ़ और कार्यक्रम मंच इन पहले श्रोता असू की कनेक्टेड है। नमस्ते जी।
1: नमस्कार हूँ पुरुषोत्तम कुमार बाली रे भद्रवा था।
0: हाँ पुरुषोत्तम कुमार जी भद्रवा था बल्लू कर दिन डोडा जिला
1: और सुना के हाल चाल है।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दसा तुंदा क्या हाल चाल?
1: बस ठीक ठाक हाल चाल।
0: हाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है क्या?
1: ठंडी ठंडी हवा चल रही है मजेदार मौसम बड़ा
0: क्या गल। अच्छा बरखा कने कने बोया पुरुषोत्तम जी?
1: लग रही बरीक बरीक
0: लग रही है उस किनारी।
1: गर्मी
0: तो है इस महीने और नोयता जी
1: बस ठीक ठाक चले आज तुम्हें याद मिलू फोन करी छड़ दे।
0: हाँ जी
1: फरमाइश करी छड़ दे अपने।

0: यार दोस्त हजू याद करी छड़ दे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और तुंदा अपना कार्यक्रम है जी, तुंदा अपना कार्यक्रम है ता।
0: इन दोस्त पंची राम, पुष्कर नाथ, शेख जफर हसन, अब्दुल लतीफ, विजय सिंह, केवल सिंह, राकेश कुमार शिमले था, ते गोल्डी कांगड़े हूँ
1: जी।
0: ते ये जो गीत सुना चाहूँ, रोज रोज माँ मेरे ना जाना बोट में।
1: अच्छा, क्या बात है क्या बात है। माँ में तेरे पक्के भी मान बोट ले।
0: नहीं माना, सही गल है, बड़ा मजेदार गीत है।
1: हाँ बहुत प्यारा गीत है, बहुत प्यारा गीत है। था इस बारी गर्मी रहा एहसास की सोना बुना मुझे लग गुंदा
0: ना ना ना गर्मी रहा एहसास ना हुआ इस बारी
1: ना हुआ है ना जी।
0: हाँ सही गल है।
1: तो कितने दिन मौसम खराब बन रहा है डोडा अंदर?
0: खराब है, रोते भी खराब है,
1: रोते भी खराब है। हाँ 12-13 तरीका था, 10 दिन की खराब
0: है। नहीं खराब है, खराब है। हाँ सही गल है। All the
1: plants your yard needs. ਜਿਵੇਂ ਸਾਈ ਤਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਬੁਸਕਦਾ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਾਫ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ
0: ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਪਲਾਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਸਾਫ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ
1: ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲਿਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
0: ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁੰਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
0: ਓਕੇ ਓਕੇ ਚਲੋ
1: ਜੀ। श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला। तो ऐसा भी है ट्यून कर रहा और डोडा जिला था किया सो कॉल छो रहे थे और ही मैच बुझेगो धर्मशाला में आईपीएल बुझेगो और जश्न में डूब रहे थी है क्रिकेट प्रेमी श्रोतो सब है ना। और इसी सो की श्रोतो कार्यक्रम जो आगो बढ़ेंदे तो सब बन रहे इस समय वेड़ी गुंजन रही गुंसो की बहुत सारे सवाल बहुत सारे सवाल के ना सो इंदे मन में भी बुंदे तुंदे वास्ते सो है जरूर तुस होगे साझा कर ले श्रोतो। लेकिन आइया तत्थों पहले किया सो प्यारे दे गीत तू सब ये जरूर होना लेंदे है ना आगाज कर लेंदे कार्यक्रम रहा इं इस गीत सोगी और फिर आगाज तो बाद श्रोतों जो फरमाइशन सो फरमाइश सब आसू पूरी करनी हिन कोशिश करने की सब मेरी फरमाइश है ना सो जरूर पूरी हुन। आइए श्रोतों हुनंदन तू सभी हो ये गीत ये प्यारा दे इवन की गीत तुंदे सभी रे रेडियो सेट मा वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और एक कार्यक्रम सचिन कपूर सो की बिल्कुल लाइव होने कर देना हिंदी अपनी गप्पा बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है आख मुख्य फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा तो श्रोतो तो सब बस हो गए जरूर जुड़ी सकते हैं बनी सकते हैं 7088809 पर कॉल करे करे नंबर आख मुख्य फिर आऊँ शेयर कर लो हाँ 7088809 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो होने सकते हैं। बहरहाल मौसम जो लेकर गया सो बहुत सारे मनु चिंतित हैं का जो कि कुछ एक था मतलब दान कुछ एक किया सो गेहूँ कट्टी कुट्टी करे के सो पाई बिखरे न लेकिन कुछ एक हाले कटने फसल है ना ता हिमाचल प्रदेश में मई महीने में भी मौसम वे तीखे तेवर हेरी कर गया सो प्रदेश में कई हिस्से में गया सुमन डर गया हैं श्रोतों और मतलब तो सुमनने ने जो रविवार रात जिस तरीके होगी मौसम गरजू करता था जिस तरीके होगी आंधी तूफान चल रो थो बिजली चमको करते थे बरखा बोए थे इतों मनु जो गर्मी तो राहत तो जरूर मोड़े ले लेकिन मनु डरे भी जरूर थी है और कई इलाके में कि ऐसो जनजीवन की ऐसो प्रभावित भी हुआ आशोतों शिमला हमीरपुर चंबा कांगड़ा बिलासपुर और ऊना जिला में अद्धी राति वे दौरान तेज हवाएं चली सो तो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला शिमला के ऐसो प्रदेश में 15 मई तक की ऐसो बरखा आंधी और बिजली चमकने व अलर्ट की ऐसो जारी कर रहा है जबकि 17 मई तक मौसम खराब की ऐसो बने वहने व अनुमान की ऐसो जताव कर दिन विभाग के अनुसार 12 मई जो यानी कि आज किया ऐसो कई इलाके में बरखा भूई भोने हैं ओलावृष्टि भूई भोने और 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थो तेज़ हवाएँ किया सो कई इलाके में चली बोने तो और गल करो 13-14-15 मई जो भी बरखा गया सो 10 रुपया बिजली चमकना और येलो अलर्ट किया सो जारी कर रहा श्रोतों न्यूनतम तापमान रे अगर हूँ गल करूँ श्रोतों तो शिमला में 15.8 धर्मशाला में 10.9 न्यूनतम तापमान और पालमपुर में 14 डिग्री सेल्सियस रे आसपास है श्रोतों ता चलिए कार्यक्रम जो होगा बढ़ने तो सब बन रहे हैं इस समय एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला सोगी और आइया कार्यक्रम जो होगा बढ़ने देने और अगली फरमाइश किया सो पूरी कर दे हिन फरमाइश रहा दोहरा वे चली भी हुआ श्रोतों।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो ऐसा बी टी उनके उठ और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही था। इस कार्यक्रम में श्रोताओं तो ऐसा जुड़ी सकते हैं अपना पसंदीदा गीत होने वास्ते 7088889 पर तो है कॉल कर सकते हैं। अक मौके फिर ये नंबर है दोहरंदा हा 7088889 पर तो है कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत क्या सो होनी सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी क्या सो साझा कर सकते हैं। पर बहरहाल श्रोतों कार्यक्रम जो है बढ़न दिन थोड़ा करी और आगू और जहाँ गलत हुआ है श्रोतों डर दिन सोई गल के सो बच्चू कर दे 15 वर्षीय बच्चे के जो कि शात लाई वा रहने वाला तिनिए कि सो फंदा लाई लो श्रोतों और फंदा कतियो लायो फांसी कतियो ले किसो दसवीं में क्या सो फेल बुझे गो हा अब तो है रिलिया की तसी वास्ते इंदे फिलहाल अक्षोता असू की कनेक्टेड थी है लेकिन डिसकनेक्ट हो चुको 300 लास्ट नंबर तो यार तो है रिलिया श्रोतों की अह कदे इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हा या कदे परवरिश बच्चों कर दे हा बच्चे अंदर क्या मतलब कुछ सहने वे शक्ति की सोई ना रे हो रे। फिलहाल इंदे श्रोता असू की कनेक्टेड है नमस्ते जी।
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी।
1: नमस्ते
0: जी नमस्ते कौन बोल रहे हैं और कड़ी थों बोल रहे हैं जी। हेलो हेलो हेलो हेलो माफ करा जी तुम्हारी आवाज की सुनाई छू कर दिया। हेलो चलिए माफ करा जी तुंदी आवाज़ आसू तक ना पुजू कर दे कनेक्ट ना पुजू कर दें तो है फिर एक इसकी और ही नंबर दो या फिर एक ही ऐसा ट्राई करा तो है पूछ रहे थी ये श्रोताओं कि मतलब समझ ना लगू कर दे कि यह बच्चे रहूँ क्या है इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करूँ कर देने या बच्चे रहूँ यह क्या ऐसा माहौल बनाई छू कर देने या क्या है तस्वीर बचपना ऐसा डर कि सो मतलब जो कि जीवन को आसान थोड़ने ये तो चलो दसवीं फेल बुझगो तो तस वास्ते इतना बड़ा बुझगो कि तिनी अपनी 15 साल रे बच्चे अपनी जिंदगी की सो खत्म करे ले अरे जीवन मतलब इतों मोटी मोटी चुनौती के अंसो से भी जीवन में ही नहीं और शायद तथों बड़ी बड़ी चुनौती में दस फेल भी बुझेगा ना है ना और बल देने की जिंदगी जीना आसान तो ना बन दे जिंदगी जीना आसान था मन दे कि तो है कस हिसाब हो गया अपने आप जो मैनेज कर दें कस हिसाब हो गया तो है क्या सो तरक्की कर दें आगों चल दें बुलंदी भी और किया सो बढ़ दें ये चक्कर बंदा तो ये मुझे समझ ना आई कि कहो तिनी बच्चे के कंपार्टमेंट थे हालांकि फेल भी ना थो कंपार्टमेंट थे तसी दसवीं अंदर और टाइस होगी और चुन्नी होगी कि इतनी पक्खे में लटके ही करे 15 साल रहे बच्चा तो अपनी जान देते ऐसा मानसिक तनाव तिनी ले अपने शरीर में अपने दिमाग का अंदर सोता हूँ छात लाई क्षेत्र रहने वाला है 15 वर्षीय छात्र है इतने खौफनाक कदम ही नहीं है चुकू सोता हूँ कि घर में आगे ऐसो पंखे सोगी लटकी को अपनी टाई और चुन्नी लेकर के नहीं अपनी जीवन लीला के सो खत्म करे थे काफ़ी ज़्यादा दुख मुंदा शो तो यही दही गल्ला होने करी था काफ़ी अत्यधिक दुख मुंदा कि आजकल रे जनरेशन क्या सो वाकई मैं करूँ क्या कर दे है ना। तो चलिए फिलहाल कार्यक्रम में तो है सब हूँ कर देना आर जे सचिन कपूर जो इस कार्यक्रम में तो है भी जुड़ सकते हैं लाइव 7088889 पर। बहरहाल हिंद अगले श्रोता सोगी कनेक्टेड है नमस्ते जी।
2: नमस्कार महाराज जी।
0: जी महाराज नमस्ते नमस्ते ठीक ठाक ना।
2: हाँ जी ठीक ठाक।

0: महाराज, चलो माल के दिच्छू कर रहा, थोड़ा मजा खाने हो है
1: हाँ
0: ना। आगे जे ना भी चल दी तम जो परमात्मा दिंदा है या।
1: दिंदा है, दिंदा है
0: हाँ
1: बिल्कुल।
0: जी
1: रास्ता तो सो ही खोल दें जी।
0: हाँ जी, रास्ता बना उस माल के आगे ही खुलता जी।
1: हम हमेशा बोलता इंसान ही ना सोचा कि हूँ बड़े बड़े है या मंजूल है, कोई कमी नहीं या कुछ भी ना, ऐसा कुछ नहीं है, या हूँ बड़ा गरीब है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि
0: नहीं
1: उन्हें हर दिन रा की ऐसा हिसाब रख रहा। हाँ
0: हाँ जी,
1: जी, हर मनु रा हिसाब रा हिसाब रख रहा तीन
0: बिल्कुल,
1: उपराले इंदे जी
0: क्योंकि परमात्मा परमात्मा के इंसान जो इंजा ना मारदा कभी भी,
1: ना मारदा
0: क्योंकि आठ पैर देते
1: जी।
0: जे संजय माता ने कमल तुम 100 रुपया से कमाई सकता है बुढ़ा से बुढ़ा भी।
1: हाँ
0: हाँ जी,
1: बिल्कुल
0: और जनाब तूफान भी बड़े बच कर दे, नुकसान भी बड़े बच कर दे ने हैं।
1: जी, बड़े ज्यादा।
0: अबे हुई नहीं देखो तुम दे मुंह ऐसी ऐसी गल्ला, फिर भी इंसान जो पता ना लग गया था क्या करना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि हम राती उठी गई सड़का किनारे गो तो पूरी सड़क जड़ी थी ना सो पूरी मतलब घाव की भर दी, तिरंगड़ा होगी भर दी, कुटी कुटी
1: अच्छा।
0: डाले पिंजा। तो मेरा इरा तूफान भी बची, वो बरखा भी थोड़ी मती बची, परसों तो ज्यादा बरखा हुई।
1: जी जी काफी
0: हाँ
1: ज्यादा।
0: जी, तो ये कि इंसान जो राती ज्यादा ना सोना चाहता कि मानिए जाते कई से कई सही के गंदे उठते नहीं, तिया भी बाहर उठी करिए ना चाहता।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। ए बार का
0: हाँ
1: अंदर
0: जी
1: जो रविवार संजब छोरे तो आ रहे समझा,
0: हाँ
1: हम न
0: जी
1: जाने कितने छत्ता के अंसोड़ी छुरी है ना
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ी छत्ता उड़ी सूरी
1: जी।
0: और नुकसान भी बड़े हुए, बिजली तारा टूटी, कई बेचारा का बंदा खत्म बची वो।
1: खत्म बचेगू,
0: हाँ
1: खत्म
0: जी,
1: बचेगू।
0: ये भी बड़ा दुख लगता ना।
1: काफी ज्यादा, काफी ज्यादा।
0: दूई गल ये होंगी कि तारा पर चढ़ दे हो तो बिजली छड़ने वाला कोई बंदा होगा।
1: सोए ना जी।
0: 10 बजे क्या बिजली छड़ देता ही आके ऐसा कि जंदरा लगाना चाहता, ताला लगाना चाहता, तू निकल लैन मैन बिजली बनाई के ना उस तू निकल सो ताला ना खोलना चाहता। पता नहीं क्या चुगरदा संसारा नहीं।
1: बहुत
0: और
1: ज्यादा
0: जनाब आके गाना सुनना
1: जी। जनाब कुंडने होना
0: ये होना जनाब, ठगी ठगाई आऊं दिखती ब्याई तेरे लड़े दिखती लाई।
1: तो अच्छा, ठगी ठगाई।
0: आऊं दिखती ब्याई तेरे लड़े दिखती लाई, ये पठान मेरे प्रवीण पठानिया दा।
1: अच्छा ठीक है जी। नौ की जो निकल रहे यार प्रवीण कपूर पठानिया यार ना। ठीक है
0: जी महाराज,
1: ठीक है ठीक है जनाब जी, जरूर होने ले तो सुए गीत है
0: ठीक है महाराज जी,
1: जी। नमस्ते जी, धन्यवाद।
0: नमस्ते जी।
1: श्रोता एफ एम 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है, सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के नो चल रही। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहा, सभी श्रोतागण रहा। आइए श्रोता हम कार्यक्रम जो हो अभिनंदन और सभी री फरमाइश है सो सू जरूर पूरी करने हिन। और चलिए जी, रिजल्ट री गल चल रही थी तो ततियो कंटिन्यू कर देन कि ऐसा गलत काम किया सुना चुकना चाहता जितना भी यूथ मुझे इस समय हूँ करता हूँ, तू सब भी बोलना चाहता कि ऐसा गलत काम किया सो ना करना चाहता है ना। सुसाइड करना किया सो सल्यूशन नहीं है कहा भी गला रहा, जिंदगी था लड़ना हा, जिंदगी था गुलना हा और फिर ही खड़ी ना हा, ये सल्यूशन है ना। तो चलिए परवीन कुमार पठानिया री आवाज़ में गीत है, सभी है जरूर सुनवा, ओ मेरी लाड़ी तेरे नखरे बड़े भारी है ना। प्रवीण पठानी ऑफिशियल पेज में ये गीत है श्रोताओं, और जो इन्हें ठगी ठगाई री गल करे तो ये ठगी ठगाई लेंदेन पहले इस गीता जो होन देन तुंदे सभी रे रेडियो सेट में।

0: শত এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধরম শালা তো হ্যাঁ সবই টিউন করো আর এই কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা গেন সত বিলকুল লাইভ হুন কর দেন এস সময় চলি এন্দ আগলে শ্রোতা আস হোগে বিলকুল কানেক্টেড ইন আর বহুত খাস মেহমান ভি আস হোগে কেন সো মৌজুদ হিন শ্রোত তিনি হোগে ইন্ট্রোডিউস তো সো জরুর করল হ্যাঁ আর খাস তাম ইন কজো কি হিয়া রি যো পঞ্চায়েত সো পহলি বার কে আসো বনু কর দিয়া সো গল বাত হ্যাঁ পুরি জরুর করল শ্রোত বরহাল चल दिन हगू और इन श्रोता का सोगे कनेक्टेड हिन नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: सरिन भाई
0: बहुत बड़ी अच्छी तो है बल्ला तो है ठीक ना
1: हां जी है ठीक ना
0: चिकन बल्लुंदन और कड़ी था बल्लुंदन
1: ये कंडी बल्लो दे आओ
0: कंडी था क्या ना जी तुंदा
1: मेरा नाम स्वीटी
0: स्वीटी
1: हां जी
0: क्या बात है जी स्वीटी जी तुंदा ना बड़ा प्यारा जी स्वीटी जी
1: और करन तो है
0: बहुत बढ़िया स्वीटी जी तो ये दसा तो ठीक ना
1: आज जी है ठीक ना
0: अच्छा करे लगरेन
1: कुछ ना आज मेरा जन्मदिन है ना जन्मदिन की तैयारी लोरी कर ला
0: क्या बात है बहुत बहुत बधाई बोन तू सो बड़ी बड़ी मुबारका बोन तू सो
1: हां जी धन्यवाद
0: कितने साल रहा पाले रखो तो मन्नो मन्नो
1: जो मेरा आज 14 माले ना मतलब
0: कितने साल रहे जी
1: 14 साल
0: मतलब 14 14 साल रहे क्या बात है चलिए बहुत बहुत मुबारक बोन तू सुबह बधाई बोन जी ता बर्थडे केक कितने बजे कटी ना आज
1: मतलब 7:30 7:30 बजे
0: क्या बात है पूरा टाइमिंग फिक्स करके रुक रहे 7:30 हैं
1: अंजी
0: क्या बात है क्या बात है अच्छा ता चीफ गेस्ट माबड़े ही बुने
1: अंजी अंजी फ्रेंड होने से वे फिर घर के अंदर तो हरी
0: अच्छा अच्छा चलिए कस स्कूल है पढ़ते हैं जी
1: सेंट
0: मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या बात है बहुत अच्छा स्कूल है बहुत प्यारा स्कूल है
1: धन्यवाद
0: जी जी जी बिल्कुल पेरेंट इतने प्यारे हैं बच्चे इतने प्यारे हैं टीचर इतने प्यारे हैं सिस्टर इतनी प्यारी तड़ी हरी और कुंडन की थोड़ा पसंद कर ले जी
1: भाई अब तो अपने पसंद रहो ना मो रूपड़ूंगा लोल मत जाऊंगा गाना नहीं है वाला
0: अच्छा तो आज दिन तो मैं पहले भी कॉल कर रहा था तैड़ी की सेरी पसंद रहा हूं रहा तो
1: तक अपनी हो और पसंद रहा होना हो
0: अच्छा अच्छा
1: हां जी ताने तो रु एतियाला बसवाला गाना होना हो भाई
0: अच्छा अच्छा
1: एक बार फिर करो शायद मैं विचार दर का फिर शायद तो होना हो आग लगे टेंशन नो हां हां
0: चलिए ठीक है स्वीटी जी तुंदी फरमाइश में अह प्यारे दे स्वीट जे गीत की सो तुसु जरूर होने ले हां जी
1: हां जी ठीक ठीक है भाई जी
0: ठीक है जी धन्यवाद
1: धन्यवाद
0: एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला तो है सब ये ट्यून कर रहे और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप अगेन सो लाइव चल रही बहुत सारे श्रोता अगेन सो कॉल करू कर देन श्रोता तू सब यो कनेक्ट जी जी बुझ सकते जी जी सुले पुछ दे कॉल है कर देगन दे हिन एक खास मेहमान सोगी तू होगी मिलाना जरूरी थू श्रोताओं का जो कि एक खास मेहमान के सो आज सुले छूरे थी है यारा इन्यो कॉल को छूरे थे और इंटरव्यू वास्ते छूरे थी है जो कि चुनावी बेला हा चुनाव संवाद और चुनाव जो लेकर के सो हर कोई गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हर पार्टी की है चाहे सो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है चाहे आज़ाद उम्मीदवार हैं सो हर कोई की है सो डोर टू डोर प्रचार प्रसार किया सो करू कर दिन बखूबी करू कर दिन और इसी बीच सो की किया सो विजय कपूर जो कि टीका जतैड रहे निवासी हिन जजारू हिन बहुत प्यारे हिन और सोगी सोगी श्रोताओं बड़ी परख रख दे हिन खासकर परख कति अंदर रख दे परख जरूर रख दे अपने टीका जतैड में बड़ी परख रख दे अनेकों कामियाँ टीका जतैड वास्ते कर रहे हैं और आजाद उम्मीदवार हिन और उप प्रधान पद वास्ते के सो खड़ रहे हिन क्या कुछ है यारे बारे है जरूर जाने ले ले शोतो विजय कपूर जी पहले तो तुंदा इस कार्यक्रम में दी अपनी गप्पा में बहुत बहुत स्वागत है
2: रेडियो गुंजन ते सचिन तुंदा बहुत बहुत धन्यवाद कि तू हमें इस लाइक समझो
0: जी तुंदा भी धन्यवाद है विजय जी हंगा काफी बारे मुझे लगता है बड़ी ज्यादा तो है अपना प्रचार प्रसार कर लो
2: जी लग रहे ना बाकी तो रवदी मर्जी तो जनता की मर्जी
0: चलिए जी, जनता जनार्दन है, जनता जो फैसला लले सो सही फैसला किया सो लेना है। विजय जी पहले तो ये दसा कि तू है मैं तुंदा इंटरव्यू होनो अब जो जो अंदर चल रहा थो जो लाइव ना थो ये तो लाइव चल रहा जो रिकॉर्ड है थो तदी तो ये बल्लो क्या है काफ़ी ज़्यादा काम के सो टीका चतैड़ वास्ता के सो कर रहे हैं ना बगैर किसी पद है अब तो चलो तू सो जनता आशीर्वाद बोला था तो है तस पद वास्ता उम्मीदवार तो है तो बने सकते हैं ना इन सो तो वक्त दस ला लेकिन क्या कुछ काम तो है टीका चता वास्ते गुरु रिंद सो जरा जनता जो दसा
2: सर सब तो बड़ा दा जो कम आ जो मेरी नज़र में मुझे लगता सब तो बड़ा एक्चुअली जो मुक्ति धाम हों सो मनु आखिरी घर हों तो लोग शमशान बल्द मुक्ति धाम बल्द मुझे लगता तो कि इंदा जो चितैड़ा जो मुक्ति धाम अटे स्थिति बड़े बड़े खराब थे बहुत ही ज़्यादा खराब थे तेरा वास्ते मैं आऊँ आख हफ्ता शिमला रहो और जयराम जी सोगी मिलो तियाँ मैं रिक्वेस्ट करे तियाँ मैं रिक्वेस्ट मने तियाँ फंड प्रोवाइड कराओ अज तस मुक्ति धाम मेरा काम शुरू है तड़ी तक सड़क बन रही तड़ी नलका लाइट सब व्यवस्था भैया मेरे चितैड़ जनता रे सहयोग होगी इंदे बीजेपी सरकार थी तड़े त्यार सहयोग की कांग्रेस की सरकार है सो भी बेचारे सहयोग करवाए तो मुझे लगता सो मेन अक् तू मेरा अक् हो रहा है कि आँ समझा कि जो मेरा ये मुक्ति धाम आ सो अक् पार की तरह बने का तैयार हुआ पर प्रयास रहता प्रयास करूँगा अगू प्रयास करना तो सो ही मेरा मेन काम सो तू आका है और बच्चे वास्ते पार्क आ ग्राउंड बाकी जी छोटी मोटी समस्या है जरूर जो भी थी सो वह करूँगा बाकी भी अगू फ्यूचर में भी करते रहना तो यही मेन काम थी है।
0: अच्छा चलिए ठीक है जी, फ्यूचर में क्या सोचते हैं कि टीका चतैड़ पहली बार गया सो पंचायत बनु कर दे आई थिंक 2009 में लास्ट इलेक्शन किया कंटोनमेंट रहे थ्रू छू रहती है 2003 में कंटोनमेंट हो है माफ़ करो तो है आज़ाद हुए न और अब है 26 अंदर किया सो इलेक्शन ही न तो क्या रूपरेखा बढ़न दिन क्या तुंदे माइंड में किया सो विजन आ टीका चतैड़ जो लेकर
2: जी पहली बारी पंचायत बनाते हैं लोग बड़ा बड़ी उत्सुक न हर कोई इलेक्शन में भाग लेना चाहता हर कोई तैयारी भी करूँगा मेरे मन में चितैड़ वास्ते बड़ा कुछ आ जोड़ा सोच रहा मैक्सिमम मुझे लगता हर कोई जो खड़ूँगा सोचूंगा कुछ ना कुछ तो सोचूंगा घर रहता सब प्रयास करूँगा मेन समस्या इनकी कूड़े समस्या बड़ी बड़ी बहुत बड़ी समस्या तेरे निवारण वास्ते प्लान है ना सो करने न सड़क की समस्या सड़क अज तक पंचायत इंदा जो पंचायत बने आ सो अद्धी बाजार अंदर तो अद्धी गाँव अंदर गाँव में मेरे ख्याल ना बराबर काम पूछे ग्रां अंदर न कोशिश है कि जो भी समस्या है रस्ते न पानी न बिजली न बिजली तो मैक्सिमम ठीक आंदी बच्चे हाँ कोशिश करे हाँ भी पानी की भी समस्या आ सू तो तिर निवारण वास्ते अब आऊँ इतना बड़ा तो है नहीं एमएलए है एमएलए टाइम में अंदर अगर वादे कर छो लेकिन यह है कि जी जान से कोशिश है कि इस समस्या दूर करने की पूरी कोशिश कर ले।
0: चलिए बिजली पानी भी गलत तो है करी थी विजय कपूर जी लेकिन गांव अंदर अक जड़ी तक मैं स्टडी करूँ टीका चतैड़ जो तड़ी तक ग्राहक मेन मुद्दा है भी है कि गांव अंदर क्या ना सो जगह जगह नशा भी बुंदा जाए सो तो है सुखे नशे री गल कर ले जाए तो है लिक्विड रे गल कर ले अगर तो है जनता रे आशीर्वाद हो वो प्रधान पद पर इंदे न तो नशे जो लेकर क्यों करी तू सु काम करना
2: ये जी समस्या है हर एक गाँव रे मुझे लगता है चाहे पूरे हिमाचल में भी समस्या पूरे हिमाचल अंदर हर गांव में गीला नशा सुखा नशा मैक्सिमम पर मेरी प्लान ये है कि अगर तक बच्चे हो इस तरफ गाने टाइम नहीं दिता अच्छा त्यारे वास्ते अच्छी खेल कूद व्यवस्था हुआ पढ़ने व्यवस्था हुआ अतः तेरे बावजूद जो नशा बेचूंद या करूंदा तीया भी वक्त चेतावनी बड़ी जरूरी है अगर सो ना मनता तो फिर तेरे वास्ते कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करने हैं लेकिन इंदा यह कि बच्चे अस कोशिश करने कि इस तरफ बच्चे सोचने भी ना इस तरफ गान भी ना तेरे वास्ते तेरी स्टडी वास्ते या तेरे खेला वास्ते या तेरा होर जो भी तेरे शौक न तति वास्ते सु काम करना
0: स्टडी री तो एक गल करिए तो ठीक है चतैड़ नोई पंचायत बनु कर दे हाँ किस तरीके होगी हेरते क्या तुह चाह दिन कि आके प्यारी दे लाइब्रेरी भी हुआ
2: ये प्लान मेरा काफ़ी साल 10-15 साल तो पहले मेरे प्लान थो आक कि अक तो लाइब्रेरी सो हर हाल में सो बनाने तेतिंदर वाईफाई जो कुछ भी बोला कंप्यूटर स्पोर्ट सब कुछ व्यवस्था करके देने बच्चे हो हर एक चीज़ और फ्री ऑफ कॉस्ट है अस सिर्फ अगर कुछ शुल्क भी लेना बोलते 100 रुपये जो बिजली का बिल लेना ये करने तेरा इलावा मैं जो बुद्धिजीवी नहीं है ग्रां जो कोई प्रिंसिपल रिटायर्ड कोई ऑफिसर रिटायर्ड तियाँ भी गल करें तियाँ कोई बह हुआ तो सोचा कि आख बच्चे वास्तव स्टडी सेंटर इस तरह तैयार करके देन ताकि अगर पियन था लेकर तक आई एस ऑफिसर वास्ते अस तीन सही दिशा में गाइडलाइन कर सुझाने मजी अस लेन इंदे तड़ी बहन पढ़न लिखन सब व्यवस्था करने है। अगर मेरा खुद का यह है कि अगर असें पांच साल दस बच्चे भी इंदे अगर गवर्नमेंट जॉब में या अच्छी जॉब में इंप्लॉयड होंगे तो इंदे वास्ते बड़ी सौभाग्य रीते बड़े अचीवमेंट बने इंदे वास्ते पर असें कार्य रहते ना करना तो करना ही 101% करना तेरे वास्ते
0: जनता का क्या लगता जिसको कितना करे आशीर्वाद किया सो विजय कपूर पर हा
2: जनता रे विश्वास होगी तो त्यारे बलने उठे असें एक कदम चुकूगा इं लगता कि ना ये एफर्ट लादा एफर्ट करी सकता बाकी जनता अंदर कुछ अच्छे भी ने कुछ सोचने वाले भी ने बुद्धिजीवी तो बस आऊँ तीन हूँ आशीर्वाद चंदा आशीर्वाद मुझे दीन मुझे बड़े विश्वास रखन फिर मेरा काम हेरन सो तीन काम हेरू भी आ अब होर बरत लाता होर अच्छा काम क्योंकि जाके बंदे को पोजिशन बन गए तो बंदा ईजीली दस काम कर सकता।
0: चलिए ठीक है जी विजय कपूर जी तुंदा धन्यवाद है तुंदे राय की सुलख श्रोता जरूर होने हाँ और विजय कपूर थी ये श्रोताओं जो कि उप प्रधान पद वास्ते टीका चतैड़ थो खड़ुरन योल टीका चतैड़ बहुत ही प्यारे दे ग्रह हाँ और उसी और ज़्यादा प्यारा करने वास्ते कि आसो विजय कपूर अपनी औरतों की आसो कोशिश जरूर करू कर देन तो विजय जी तुंदा धन्यवाद गंदे गंदे यूथ जो क्या तो है संदेश देना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं
2: यूथों मेरी अक रिक्वेस्ट बोली सकता तू संदेश कुछ ही बोली सकता यह है कि अपने परिवार है रहा, अपने गाँव या आस पास ऐसे रहा जिंया कि अचीवमेंट ले आ, अपनी सोच जो पॉजिटिव रखा हमेशा कभी भी नेगेटिव साइड ना गाना समस्या इंदी आ है बेहू ग्राम होर भी ने बहुत अच्छे अच्छे लोग तीन लगा हा तीन डिस्कस करा अपने तुसे नशे तरफ मत लेगा अंधेरे तरफ मत लेगा अच्छा तो अगर अस जीती करी इंदा तो आपको अस अच्छी जगह लेके गाना अस तुस बिल्कुल खेल कूद पढ़ाई लिखाई हर व्यवस्था अस करने है पर समय तुंदा साथ चींदा तुंदा तो समय दी चींदा तुंदा सौगे बाकी 101% तुस अस अच्छी तरह लेकर ले बहुत बहुत धन्यवाद तुंदा अक बारी फिर प्रार्थना तुसू कि मुझे जिता अते गाँव के विकास के लिए आपका बेटा आपका भाई और आपका साथी आपके साथ है और आप हमारे साथ हों बस यही प्रार्थना है धन्यवाद जी।
0: चलिए जी धन्यवाद जी विजय कपूर थी जिनके मैं दसो टीका चतैड़ पंचायतों प्रधान इलेक्शन वे पद पर किया सो खड़ रहे हैं और तुंद आशीर्वाद किया सो चांद हैं। चलिए जी आशीर्वादों बाद अगर जितते करेंदे तो फिर इन थों सवाल जवाब किए सो वेड़ी गुंजन जरूर कर ला और जो भी जितते करी ला फिलहाल और भी बहुत सारे इंदे ऐसे कैंडिडेट हैं खासकर जो इन दी कम्युनिटी रे कैंडिडेट न सो मैं पहले भी दसो श्रोतों तुसो कि जो जो असू ले इंदा गला जो जो असू अप्रोच करदा गला दिन जो है तुसो की रूबरू जरूर कर ले पर चल दिन पहले स्वीटी री किनारी स्वीटी जी आग मौके फिर तुसो जन्मदिन री बड़ी बड़ी मुबारक भून और लेकर चल दिन तू सब भी हो इस गीता री और बनी रे रेड़ी गुंचन री ऐसा गूंज

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गैन सो बिल्कुल लाइव है चल रही हिंता इस लाइव कार्यक्रम में श्रोताओं वक्त वाके में पता ना लगता कि कहने ने किया सो वक्त बुझी गो तो सुतो अलविदा लेने रहा फिलहाल ना हुआ है स्वीटी जी री फरमाइश थी जो है तुसु तक पहुँचाई है श्रोताओं और बिल्कुल मैं पहले भी दस रो फिर एक मौके तुसु याद करवाना चाहता हा कि जो भी हिंदी कम्युनिटी रे मनु बोले जो भी गादे मनु बोले जो आजाद खड़ रहे हैं आजाद प्रत्याशी हैं या बीजेपी रहे हैं या कांग्रेस रहे हैं तिन्या वेड़ी गुंजन मा इन कार्यक्रम चुनाव संवाद की असो चल रहा हा तथी सोगी इस लाइव कार्यक्रम में भी तुसु एकदम सडनली की सो सरप्राइज मिल सकता जी आज की विजय कपूर जी थो सरप्राइज की सो ऐसो ऐह तुसु दिता हा पर कनेक्टेड हैं नमस्ते जी
1: नमस्ते जी
0: नमस्ते जी नमस्ते
1: और क्या हाल चाल जी
0: बहुत बढ़िया जी तो एक कुंड बल्लुंदे ना और कड़ी तो बल्लुंदे जनाब
1: मेरा नाम विजय है जी तो मैं कनेर बोल रहा था
0: अच्छा विजय जी क्या बात है थोड़े तो नाम मन जी विजय है
1: नाम जी है ना विजय जी हूं या विजय नहीं हूं या आ रही है
0: हां जी क्या होया जी
1: मेरा नाम जी है विजय हूं या तो आ रही है
0: वो तो आ रही है
1: और
0: ना ना ये नहीं सोचना जी जिंदगी बहुत बड़ी है जी कहना क्या बुझेगा अच्छा कुछ पता नहीं है
1: हां नहीं नहीं ये तो ठीक बोलया
0: था हां अमल नु जिंदगी रा जिंदगी वे लास्ट आ घंटे अंदर भी इन दी मृत्यु होने वाले बोले ना और सु पता लगना कि एक ही घंटे बाद मृत्यु तेरा भी कुछ भी हो सकता था जिंदगी लास्ट सांस तक हार ना माननी
1: नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल तो है ही है जी
0: जी जी विजय जी कौन दिन की थोड़ा पसंद कर ले
1: अरे मेरे ना भांजी का जन्मदिन है कोई जन्मदिन ऊपर सुनाई जाए गाना ना कोई
0: जन्मदिन मंच तइंद है सिंगर गौरा ने कसी चलो मुबारक दीन दे और कोई प्यारे दे पहाड़ी या गदियाली की तू सु हुन अंदर है ना जी
1: अकुल है उदा ना ना उदा ना लई नजर आगी ना
0: अकुल ना है जी
1: हां जी सुनता हूंगा ता बड़ा वो मेहरबानी
0: जी जरूर ना लेंगे जी कमाल है ठीक है जी धन्यवाद
1: धन्यवाद जी
0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ये ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के नो चल रही हिंता चलिए अकुल जी तुसो जन्मदिन री बहुत बहुत मुबारक हूं और तो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना बुलंदी पर गान तो है बहुत सारा ना तुंदा बहुत सारा तुंदा ना भुआ और इति वास्ते तुसो दिन रात मेहनत करना पैने हा 5 to 6 घंटे की असो पढ़ाई करना पैने अगर तो चाहते हैं कि तुंदा ना भुआ था है ना कजो कि तना ना बुना ना करने वास्ते कि असो संघर्ष बिल्कुल करना पैंदा हा ता चलिए जी गंदे गंदे ये प्यारे दे गीत की असो तुसु है हुन अंदे भी गंदे न और आऊं सचिन कपूर तुसु थो इजाजत भी ले लंदा हा और ये बोलना चाहनू तुसु कि हंसते रहो करा मुस्कुरंदे रहो करा सियाने री सेवा जरूर करा जड़ी तुसु लगदा कि आऊं कस के भी हेल्प कर सकदा हा तड़ी सेरी हेल्प की असो तो सो जरूर करा अपनी औरतों किसी रा बुरा मत करा हमेशा अच्छा करा तंदुरुस्त रहा पर्यावरण रा खास ख्याल रखा अपना खास ख्याल रखा इन शब्द था सचिन कपूर तुसु थो ले लेनो इजाजत नमस्ते धर्मशाला

नमस्कार, रेडियो गुंजन धर्मशाला से अब आप सभी सुनेंगे ये खास समाचार बुलेटिन रुचिका के साथ। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। कांगड़ा के अनमोल 700 में से 699 अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम। धर्मशाला में आज से शुरू होने जा रहा है आईपीएल का रोमांच। ई गवर्नेंस में हिमाचल को नेशनल अवार्ड। आईआईटी लैब से बदल रहा भारत। खेतों में रोबोट, अस्पतालों में एआई और ग्रीन एनर्जी के नए मॉडल। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए जून में लिए जाएंगे आवेदन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा की टॉप 10 मेरिट सूची में 107 विद्यार्थियों ने जगह बनाई है, जिनमें 24 छात्र हैं तो 83 छात्राएं। रविवार को घोषित नतीजे के अनुसार कांगड़ा जिले की अनमोल ने 700 में से 699 यानी 99.86% अंक लेकर प्रदेश भर में नया कीर्तिमान स्थापित कर प्रथम स्थान पाया है। वे एवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहरा की छात्रा है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्टेडियम में होने वाले आईपीएल

0: ताकि रूट बसों पर आवश्यक सेवाओं से जुड़े।
1: नौकरी। हिमाचल में 1 जून से शुरू होगा एंटी चिट्टा अभियान का दूसरा चरण। ग्रामीण संसद के लिए 89,676 नामांकन भरे गए। अब स्कूलों में की जाएगी करियर काउंसलिंग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती या दबाव में नहीं ला सकती है। भगवान शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में एक सभा में प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा दृष्टिकरण जरूरी लगता है और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध के दौरान भी इसी तरह की सोच दिखाई दी थी। प्रदेश में बढ़ते चिट्टे के कारोबार पर लगाम लगाने और युवाओं में नशे की बढ़ती लत को लेकर राज्य सरकार ने नया कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ऐलान किया कि भविष्य में सरकारी नौकरी पाने के लिए युवाओं को एंटी चिट्टा टेस्ट से गुजरना होगा। साथ ही सरकारी संस्थानों में डॉक्टर और इंजीनियरिंग जैसे कोर्स कर रहे छात्रों को भी हर साल ऐसा ही चिकित्सा जाँच करवाई जाएगी। HBU ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार परीक्षाएं 1 जून से शुरू होकर 15 जून तक आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 1 जून से 20 अगस्त 2026 तक प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान के दूसरे चरण को व्यापक स्तर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी संबंधित क्षेत्रों में कम से कम 10 शिक्षण संस्थानों का दौरा कर विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला में सब्जी मंडी केंद्रीय व्यापारिक जिला CBD परियोजना तथा हमीरपुर के प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार विश्व स्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिक व्यावसायिक स्थलों, स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं और ग्रीन ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से ये परियोजनाएं स्थायी राजस्व सृजन की दिशा में सहायक साबित होंगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर गांव में लोकतंत्र का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को रिकॉर्ड 37,114 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसके साथ ही प्रदेश भर में अब तक कुल 89,676 नामांकन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। राज्य में इसी साल से शुरू हो रहे 156 CBSE की संबद्धता वाले सरकारी स्कूलों को अलग से नॉन टीचिंग कैटेगरी के 700 से ज्यादा पद दिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की योजना है कि हर स्कूल में 5 से 6 पद नॉन टीचिंग के दिए जाएं, जिनमें 4 से 5 क्लर्क और एक अधीक्षक Grade 1 हो। शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव किया गया है। इसके तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पहली बार 10वीं का परिणाम शेड्यूल परीक्षा प्रणाली के तहत निकाला गया है। वहीं अब 10वीं के पायलट प्रोजेक्ट के सफल रहने पर मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जमा 2 में भी ड्यूल परीक्षा प्रणाली शुरू की जा सकती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों की पारंपरिक भूमिका को बदलते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बोर्ड द्वारा 8 मई को जारी किए गए एक नए सर्कुलर ने ये साफ कर दिया है कि अब स्कूलों की जिम्मेदारी केवल सिलेबस पूरा कराने और परीक्षा लेने तक सीमित नहीं रहेगी। अब स्कूलों को अपने छात्रों के लिए एक करियर गाइड की भूमिका भी निभानी होगी। CBSE ने स्कूलों के प्रिंसिपल और काउंसलर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम और करियर पाथवे अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूलों के भीतर करियर काउंसलिंग की व्यवस्था को और अधिक पेशेवर और मजबूत बनाना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने जे एडवांस 2026 का एडमिट कार्ड सोमवार को ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस कठिन एग्जाम में शामिल होने वाले रजिस्टर्ड छात्र अब वेबसाइट jeadv.ac.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जे एडवांस्ड 2026 के एग्जाम 17 मई को दो शिफ्ट में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सितंबर 2026 सत्र के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी वेबसाइट ctet.nic.in और cbse.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में MBBS की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर सामने आई है। एम्स प्रशासन ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। अब MBBS के छात्रों को परीक्षा में फेल होने की स्थिति में संस्थान से बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें खुद को साबित करने के लिए 4 के बजाय कुल 5 मौके दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल, डीजल एवं गैस का संयम से इस्तेमाल करने की अपील पर देश के वित्तीय बाजारों व विपक्ष ने जिस तरह की प्रतिक्रिया जताई है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से स्थिति संभालने की कोशिश की गई है। इस संदर्भ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित अनौपचारिक मंत्री समूह की बैठक में पश्चिम एशिया संकट के परिप्रेक्ष्य में देश में उपलब्ध पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारों की समीक्षा की गई। इसके बाद सरकार ने बताया कि देश में 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों का प्राकृतिक गैस, 45 दिनों का LPG जैसे पेट्रोल उत्पादों का पर्याप्त भंडार है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी GRAMJI कानून लागू करने का फैसला किया है। नया कानून 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही पुराना मनरेगा कानून समाप्त हो जाएगा। सरकार का दावा है कि ये सिर्फ रोजगार योजना नहीं, बल्कि गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला नया विकास मॉडल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की आधी लड़कियों के लिए मशोवरा और टांडा में पुनर्वास केंद्र खुलेंगे। 20 मई से मशोवरा और जून के पहले सप्ताह से टांडा में पुलिस की देखरेख में इन केंद्रों में लड़कियों को उपचार और काउंसलिंग दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन नंबर 112 पर अभिभावकों से चिट्टा लेने वाले बच्चों की सूचना देने का आग्रह भी किया।
2: 91.2
1: धर्मशाला के शहीद स्मारक में अब लोग व पर्यटक INS मैसूर और विजय सिंधु पनडुब्बी की प्रतिकृतियां देख सकेंगे। सोमवार को भारतीय नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ संजय वात्सायन ने इनका लोकार्पण किया। उनका कहना है कि एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन का उद्देश्य धर्मशाला में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युद्ध

0: स्मारकों में शामिल होने वाला वॉर मेमोरियल विकसित करना है। उन्होंने शहीद स्मारक समिति के प्रयासों की सराहना की। अब नजर डालते हैं मौसम पे। हिमाचल प्रदेश में मई महीने में भी मौसम के तीखे तेवर जारी हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक और बारिश जो है देखने को मिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 15 मई तक बारिश, आंधी और बिजली चमकने का अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।
1: धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने, नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम के 6 बज गए हैं और आपको सभी को पता है ये समय रहता है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला लेकर मैं यानी कि आपकी रेडियो दोस्त सुषमा हाजिर हो गई हूँ। सबसे पहले अपने सभी प्यारे श्रोताओं को सुषमा की तरफ से दो हाथ जोड़कर राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। श्रोताओं, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे और रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़ चुके होंगे। वैसे तो श्रोताओं, आप सभी रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ सुबह से ही जुड़े रहते हैं, यानी कि आप 24 घंटे इसके साथ जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि यही एक रेडियो है जो आपका मनोरंजन करवाता है हर दिन हर पल। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला अब शुरू हो गया है और जिसका समय रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का। इन 2 घंटों में हम आपके साथ बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां भी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहती है, साथ ही आपका मनोरंजन करवाने के लिए प्यारे प्यारे गीतों को भी चुनकर हम लेकर आते हैं। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे इन लाइनों के साथ, ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। बिल्कुल श्रोताओं, ईश्वर में आस्था होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आस्था होगी तो हम हर काम को कर सकते हैं और हर उलझन से निकल भी सकते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जिसे हम लेकर आए हैं बहारें फिर भी आएंगी फिल्म से, और इस गीत को आवाज़ से सजाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना प्यारा सा इवनिंग प्रोग्राम गुड इवनिंग धर्मशाला। और आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है इंटरनेशनल नर्सेज डे को। बिल्कुल श्रोताओं, नर्स सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि सेवा, त्याग और मानवता की पहचान होती है। जब कोई मरीज दर्द में होता है तब सबसे पहले उसका हौसला बढ़ाने वाली एक नर्स ही होती है। दिन हो या रात, अपनी थकान और परेशानियों को भूलकर ये हमारे स्वास्थ्य की देखभाल में लगी रहती हैं। श्रोताओं, आज के इस खास दिन पर हम सभी नर्सों को दिल से धन्यवाद कहते हैं, जो अपने प्यार, धैर्य और सेवा भाव से लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। श्रोताओं, जब भी हम लोग परेशान होते हैं, बीमार होते हैं और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो सबसे पहले हमारा सामना नर्सेज से होता है। लेकिन उनका बिहेवियर, उनका जो हमारे साथ एक लगाव होता है, वो हमारी आधी बीमारी ठीक कर देता है। उनकी बोली हुई बातें हमें हौसला देती हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रेशर काम का हो, थक जाए इंसान, तो थोड़ा सा कई बार उनकी बोलबानी में हमें लगता है कि शायद वो गुस्से में हैं। तो ऐसे में हमें ये समझ लेना चाहिए कि काम का बोझ भी होता है और हर इंसान काम में थक भी जाता है। तो कई बार हमने सुना है कि बहुत सारे नर्सिस का बिहेवियर ऐसा होता है, वैसा होता है। तो इन सभी बातों को इग्नोर करके हमें उनकी सेवा भावना को भी देखना चाहिए और उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत, दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अब आप सभी सुनेंगे आपके अपने रेडियो सेट पे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। शाम का ये समय है और इस समय आप सभी सुनते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, और इस समय भी आप इसी कार्यक्रम को सुन रहे हैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, दिल है कि मानता नहीं। बिल्कुल श्रोताओं, दिल ही है जो कभी कभी मानता नहीं है। हम मनाते हैं लेकिन दिल अपनी ही मर्जी करता है। कई बार श्रोताओं, हमें अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए, पर कई बार अगर हमें लगता है कि कहीं हमारा दिल कुछ गलत कह रहा है जिससे कुछ नुकसान होने वाला है या शायद वो ठीक ना हो, तो उसे इग्नोर भी करना चाहिए। हमेशा दिल की बात मानी जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम इस गीत से पहले बात कर रहे थे इंटरनेशनल नर्सेस डे के बारे में, और हमने बात की थी बोलचाल की। तो श्रोताओं, आपकी बोलचाल में मधुरता कितनी ज़रूरी है, इस पर हम आज ज़रूर बात करेंगे। मीठी बोली एक ऐसा गहना है श्रोताओं, जो हर इंसान को सुंदर बना देती है। हम कैसे बोलते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इसका असर सीधे सामने वाले के दिल पर पड़ता है। यूँ कहिए कि आप किसी के दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी बोली में मिठास होनी चाहिए, हमारे शब्दों में प्यार होना चाहिए। कई बार एक छोटी सी प्यारी सी बात किसी उदास इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला देती है, और कई बार कठोर शब्द जो होते हैं वो रिश्तों में दूरी भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी है वो हमारी जुबान पर है, यानी कि हमारी बोलवानी पर है। हम लोग किस तरह से किसी से बात करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कितने प्यार से बात करते हैं, ये डिपेंड करता है हम पर और हमारे रिश्तों पर। तो ये बात हमने इसलिए भी की क्योंकि आज नर्सेस डे है, और सच बताएं तो बहुत सारे लोग कई बार जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल जाते हैं और उन्हें उनसे सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों के जो मन में कई के प्रति गिले शिकवे होते हैं, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, हमें जिसने ट्रीट किया या हमें जिसका सहयोग मिला उस नर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा था। तो वो कैसे पता चला, उनकी बोलबानी से। इसलिए हमेशा हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और शब्दों में मिठास प्यार होना चाहिए। कार्यक्रम में बातचीत और होगी श्रोताओं, लेकिन अभी हम यहाँ रुकेंगे और आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का अगला एक और प्यारा सा गीत। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में धर्म कर्म का ये गीत आप सभी के लिए, आप सभी के रेडियो सेट पर।

बिल्कुल बिल्कुल श्रोताओं, इस दुनिया से हर किसी को एक नए दिन विदा होना है, मिट्टी में मिल ही जाना है, और आखिर में हम क्या छोड़ के जाएंगे, वही प्यारे बोल अगर हमने किसी से बोले होंगे तो। अगर हमने प्यारे बोल नहीं बोले होंगे और गुस्से में कुछ बोला होगा तो वो भी याद रह जाएगा। इंसान की बोली हुई बातें ही आखिर में इंसान की याद बनकर रह जाती हैं, ऐसा ही ये गीत में भी कहा गया है। श्रोताओं, कई बार एक छोटी सी प्यारी बात किसी उदास चेहरे को मुस्कान देती है, और कई बार कठोर शब्द जो हैं हमारे, वो रिश्तों में दरार भी पैदा कर देती है या किसी को उदास भी कर देती है। मधुर बोलचाल का मतलब सिर्फ धीरे बोलना नहीं बल्कि सम्मान, प्यार और समझदारी के साथ अपनी बात कहना होता है। जब हमारी वाणी में विनम्रता होती है तो लोग हमारे करीब आना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपकी बातें किसी का दिल ना दुखाएं, बल्कि लोगों को प्रेरणा और खुशी दे। और बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं श्रोताओं, और आपने देखा होगा उन लोगों के पास लोगों की भीड़ लगी रहती है जिनकी बोलबानी बहुत मधुर होती है, बहुत अच्छी होती है। इसलिए लोगों को कमाना है तो आप अपनी बोलबानी में मधुरता, मिठास, प्यार लेके आइए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुंचाते हैं चलते चलते फिल्म से, और इस गीत को आवाज़ों से सजाया है शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला पर। और कार्यक्रम में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत, और इस गीत के बाद श्रोताओं अब कार्यक्रम में समय है एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हम लौटेंगे और जुड़ेंगे कार्यक्रम में आपके संग। तो आप सब भी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला इस छोटे से ब्रेक के बाद भी।

श्रोताओं, इस छोटे से अंतराल के बाद फिर से हम शामिल हो गए हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में और उम्मीद करती हूँ सारे श्रोता जो हैं वो भी कार्यक्रम के साथ जुड़े होंगे। शाम का ही समय है और इस समय आप सभी अपने अपने काम भी करते हैं और साथ ही रेडियो गुंजन धर्मशाला को भी आप सुनते हैं। श्रोताओं, काम भी कीजिए और आपके मनोरंजन के लिए प्यारे प्यारे गीत जो हम लेकर आते हैं उन्हें भी सुनिए और इन्हें सुनकर आपको आनंद मिलता है ऐसा हम मानते हैं। चलते हैं तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको पहले सुनवा लेते हैं एक प्यारा सा गीत, उसके बाद हम आपसे करेंगे और भी बहुत सारी बातें। तो लीजिए, पेश है आपके समक्ष एक प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। ऐसे ही प्यारे प्यारे गीत कार्यक्रम में हम लेकर रोज़ाना हाजिर होते हैं। तो श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में हम आपके साथ बातचीत करते हैं, मनोरंजन करवाते हैं प्यारे प्यारे गीतों के साथ, और उसके साथ ही हम आप तक पहुँचाते हैं जानकारियाँ। तो अब समय हो गया है, चलते हैं जानकारियों की और आपके साथ साझा करते हैं जानकारियाँ। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धर्मशाला छावनी के प्रधानाचार्य सुनील चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि शैक्षणिक सत्र के लिए कक्षा 11वीं में विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में वर्तमान में रिक्त सीटों पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा रहा है। प्रधानाचार्य सुनील चौहान ने बताया, वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 11वीं में कुछ सीटें रिक्त रहने के कारण अब पात्र विद्यार्थियों के लिए प्रवेश का अवसर उपलब्ध कराया गया है। विद्यालय प्रशासन के अनुसार विज्ञान संकाय मेडिकल एवं नॉन मेडिकल में कुल 14 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि वाणिज्य संकाय में 13 सीटें रिक्त हैं। इच्छुक विद्यार्थी एवं अभिभावक इन सीटों पर प्रवेश प्राप्त करने के लिए विद्यालय में संपर्क कर सकते हैं। साथ ही श्रोताओं, प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि को भी बढ़ाकर अब 16 मई 2026 तक कर दिया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यालय में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक पूरी की जा सकती है। तो ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और इस जानकारी के बाद अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और प्यार हो गया इस फिल्म का गीत आप तक पहुंचाएंगे उदित नारायण की आवाज़ में।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोता हूँ, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। आप सभी सुन रहे श्रोता हूँ इस समय आपकी अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। कार्यक्रम में गीत संगीत के साथ साथ हम लोग बातचीत भी करते हैं श्रोताओं, और आज एक खास बात भी आपके साथ होने वाली है, एक जानकारी जो कि आप सभी तक पहुंच चुकी होगी और बहुत सारे लोग इस खबर को सुनकर थोड़े से परेशान भी हो गए होंगे। नीट परीक्षा रद्द, यानी कि आज सभी लोगों खास करके जो विद्यार्थी जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी और उनके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए थे, उनके लिए एक बहुत बुरी खबर जो है वो ये है कि नीट परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है। कहीं ना कहीं जो पेपर है वो लीक होने की खबर जो है वो आई है। श्रोताओं, किसी भी परीक्षा के लिए छात्र जो है वो महीनों नहीं बल्कि कई कई सालों तक मेहनत करते हैं। खास करके नीट की परीक्षा की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो बार बार ड्रॉप देते हैं, और एक बार सफल नहीं हुए तो दोबारा चांस लेते हैं, दोबारा नहीं हुए तो तीसरी बार भी चांस लेते हैं, और कई सालों तक मेहनत करते हैं। दिन रात पढ़ाई, तनाव, उम्मीदें और भविष्य के सपने, सब कुछ उसे एक परीक्षा से जुड़ जाता है। ऐसे में जब कोई बड़ी परीक्षा रद्द हो जाती है तो छात्रों के मन में निराशा, चिंता और हैरानी जो है वो होना स्वाभाविक है। कई विद्यार्थियों को लगता है कि उनकी मेहनत अधूरी रह गई, कई विद्यार्थियों को लगता है कि हमने जो मेहनत की उस पर पानी फिर गया, जबकि कुछ छात्रों पर मानसिक दबाव भी बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम धैर्य बनाए रखें और अपनी मेहनत पर विश्वास ना खोएं। हर कठिन समय हमें और मजबूत बनाना सिखाता है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में इस बात को हम आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कार्यक्रम में आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम के अगले प्यारे से गीत की ओर, जिसे हमने लिया है एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और गीत को आवाज़ से सजाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। शाम का ही समय है और कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। और इस गीत ने भी यही कहा है, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। तो इस समय आप अकेले बिल्कुल भी ना निकलें, शाम का ही समय है, किसी भी अपने को साथ लेकर ज़रूर एक छोटी सी वॉक ज़रूर करके आएँ और अपनी सेहत को भी ठीक रखें। श्रोताओं कुछ ही समय बाद समाचारों का भी समय हो रहा है, तो चलते हैं समाचारों से पहले लेते हैं एक प्यारा सा गीत, बेमिसाल इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय है समाचारों का, तो चलते हैं सुनते हैं समाचार।
1: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। उसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।

0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और AI संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इक्यानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। समाचारों के बाद आप सभी का कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला रोज़ाना आप सुनते हैं शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो जितने भी श्रोता हमारे साथ 6 बजे जुड़े हैं उन्हें भी, और जो श्रोता अभी अभी जिन्होंने रेडियो सेट ऑन किया है और हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें भी सुषमा की प्यार भरी राम राम, नमस्कार और गुड इवनिंग। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। तो चलते हैं, सुनते हैं दिल जले फिल्म का ये गीत कुमार शानू की आवाज़ में।

थी कि नीट की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है और कहीं ना कहीं फिर से पेपर लीक हुआ है। तो श्रोताओं, ऐसे में जब बड़ी परीक्षा रद्द हो जाती है तो सबसे ज़्यादा धक्का उन छात्रों को लगता है जिन्होंने इतनी मेहनत के बाद वो एग्ज़ाम की तैयारी की होती है और एग्ज़ाम दिया होता है, और दूसरा जो उन विद्यार्थियों के माता पिता होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों की परीक्षा में उतना ही हाथ उनके पेरेंट्स का भी होता है। लेकिन श्रोताओं, जब ऐसा हो जाता है तब हमें धक्का ज़रूर लगता है, लेकिन हमें अपना धैर्य बनाए रखना है और अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। हर कठिन समय हमें और मजबूत बनाता है और मजबूत बनना सिखाता भी है। माता पिता और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों का हौसला बढ़ाएं, उन्हें सकारात्मक सोच दें और ये महसूस कराएं कि एक परीक्षा ही पूरी ज़िंदगी तय नहीं करती है। इसलिए श्रोताओं, हमेशा याद रखिए, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, सही समय पर उसका फल ज़रूर मिलता है। साथ ही कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं, एक बात आपको ज़रूर कहना चाहेंगे, सफलता के बाद जो भी बने लेकिन ईमानदार ज़रूर बने, क्योंकि ईमानदारी की कमी से ही ऐसे केसेस होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं। ईमानदार इंसान कभी भी कहीं भी ना धोखा खाता है ना धोखा देता है। तो श्रोताओं, बातों को यहीं रोकते हैं और चलते हैं, कार्यक्रम को बढ़ाते हैं एक और गीत के साथ। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ज़माने को दिखाना है फिल्म का ये गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

श्रोताओं कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला, इस समय आप सभी सुन रहे हैं और कार्यक्रम में आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आपका अपना कार्यक्रम है और शाम का ही समय ऐसा ही होता है श्रोताओं, हम या तो अपने काम में लगे होते हैं या फिर हम लोग कहीं छोटी मोटी सैर पर निकले होते हैं, लेकिन मोबाइल फ़ोन हमारे पास हमारी जेब में हमेशा रहता है। और आपको बता दें कि रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप जुड़ सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए भी। आपको सिर्फ ऐप को जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज पर और आप जुड़ सकते हैं रेडियो के साथ कभी भी कहीं भी। कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ेंगे श्रोताओं और आप तक पहुंचाएंगे जानकारी, क्योंकि जानकारियां भी आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो लेते हैं एक जानकारी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के लिए 31 मई 2026 तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार देर साय स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा है कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के बारे में व्यापक रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है। हिमाचल व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। साथ ही श्रोताओं आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में डिजिटलीकरण के मध्य महत्व पर बल देते हुए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मरीजों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं अधिक प्रभावी और सुगम बनेंगी तथा मरीजों को पंजीकरण और जांच रिपोर्ट जैसी भौतिक अनिवार्यताओं में राहत भी मिलेगी। उन्होंने IGMC शिमला में पायलट परियोजना के रूप में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और फार्मेसी विभाग के मरीजों का पूरा डेटा डिजिटाइल करने के निर्देश दिए। साथ ही आपको बता दें श्रोताओं कि श्री सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को राज्य में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस दिशा में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों एवं उपकरणों पर 3,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। सरकार सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की सीटें दोगुने करने के प्रयास कर रही है। यह चिकित्सक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते भी हैं। तो श्रोताओं ये थी जानकारी जो कि आप तक पहुंचाई रेडियो गुंजन धर्मशाला ने, और कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे एक और प्यारे से गीत के साथ। चलते हैं श्रोताओं, सुनते हैं जल्लाद फिल्म का ये गीत साधना सरगम और उदित नारायण की आवाज़ों में।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला। इस समय आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं आपके अपनी रेडियो दोस्त सुषमा के साथ। और इस गीत के बाद अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं श्रोताओं। इस ब्रेक के बाद फिर से हम जुड़ेंगे आप सभी के साथ। आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

छोटे से अंतराल के बाद फिर से श्रोताओं आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में। और श्रोताओं थोड़ी सी बात करेंगे हम मौसम को लेकर कि मौसम आजकल जो है वो बड़ी ही अजीब जो है एक गेम खेल रहा है। कभी तो एकदम से तेज़ धूप लगा रहा है और कभी एकदम से बहुत तेज़ तूफ़ान, और आजकल रात के समय में ऐसा तूफ़ान आ रहा है और लोग जो है वो डर भी रहे हैं। श्रोताओं डर तो लगता ही है क्योंकि मौसम कौन सा है, ये महीना कौन सा है और मौसम क्या कर रहा है, ऐसे में डर तो बना ही है। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये मौसम इस बार ऐसा कुछ हुआ है कि पता नहीं क्यों मौसम जो है वो अपने रंग बदल रहा है। हमें तो लगा था कि बहुत गर्मी पड़ने वाली है लेकिन गर्मी जो है वो पता नहीं कहाँ खो गई है। तो खैर, मौसम में बदलाव किस कारण है, क्यों है, ये हम सभी थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोग सभी जानते हैं कि बहुत समय पहले क्या हाल था, क्या धर्मशाला था, क्या हिमाचल था, हर जगह जंगल पेड़, और अब देखिए सड़कें चौड़ी चौड़ी और जिसके लिए जंगल बहुत सारे काटे गए। पेड़ काटने में कुछ ही मिनट या कुछ घंटे बोल लीजिए लगते हैं, लेकिन एक पेड़ को लगाने में और उसे सजाने में, बनाने में, बढ़ाने में बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा साल लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं समय की ये भरपाई जो है वो हमें मौसम जो है वो भरने के लिए कह रहा है कि भाई आप लोग भी नहीं समझते हैं तो भी हम भी क्यों समझें। तो कहीं ना बोलते ना टिट फॉर टैट हो ही जाता है, तो ये भी हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो श्रोताओं थोड़ा सा हमें संभलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि मौसम ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ये बदल रहा है। मौसम तो बदलता नहीं था, जब भी गर्मियों का मौसम है तो गर्मियाँ आती हैं और जब सर्दियों का तो सर्दियाँ आती हैं, लेकिन अब मौसम जो है वो इंसानों की तरह बदलने लग पड़ा है। तो भाई कैसा लगता है जब मौसम बदलता है, अब खुद समझ लीजिए जब लोग बदलते होंगे तो कैसा लगता होगा। तो उसी तरह से प्रकृति जब अपने मौसम को बदलती है तो भी हमें कहीं ना कहीं एक डर सताता ही रहता है। तो श्रोताओं अपने पर्यावरण का खास ख्याल रखना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पर्यावरण अगर हमारा अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अपने आप सही रहेगा, और ये बात अगर हम जितनी जल्दी समझ जाएँ उतना ही अच्छा है हमारे

लिए भी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो चलते हैं कार्यक्रम में, लेते हैं एक प्यारा सा गीत अभिलाषा फिल्म से, और इस गीत को आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत आप सभी के रेडियो सेट पर।

0: मन।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और ऐसे ऐसे गीत जब शाम के समय हमें सुनने को मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी गीतों के साथ गुनगुना लेते हैं। श्रोताओं, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे बहुत सारे श्रोता गीतों को सिर्फ और सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, उनके साथ गुनगुनाते भी हैं, उनके साथ झूमते भी हैं। और झूमना भी चाहिए, गुनगुनाना भी चाहिए। गीत जो हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक कह सकते हैं सहारा होते हैं, इसलिए गीतों को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल कीजिए। कार्यक्रम में अब समय है श्रोताओं आपको कहानी सुनाने का। एक प्रेरणादायक कहानी आज लेकर आई हूँ श्रोताओं इस कार्यक्रम में। आप लोग कर्मों को मानते होंगे श्रोताओं, कर्म जो हैं हमारे दोबारा वापस मुड़कर हमारे पास आते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम लोग कर्म जो हैं वो बुरे ही करते जाएंगे। लेकिन नहीं, एक डर बोल लीजिए या एक बात कह लीजिए जो हमारे दिमाग में रहती है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल भी हमें मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो कहीं ना कहीं बुरा हमारा ही होगा। ऐसी ही एक कहानी लेकर आई श्रोताओं। एक बुज़ुर्ग महिला थी और उनकी एक रूटीन थी, सुबह जब भी वो उठती थी चाय पीती थी तो उनकी खिड़की से बाहर बहुत सारे पंछी जो थे वो उड़कर आते थे, उनकी खिड़की पर बैठते थे। तो उन्होंने क्या किया, रोज़ उन्हें दाना डालना शुरू कर दिया। और आप जैसे कि कहते हैं कि एक बार अगर आप दाना डालोगे तो वो पंछी या वो पशु दोबारा से आपके दरवाज़े पर ज़रूर आता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमें कहाँ क्या मिल रहा है। तो ऐसा ही हुआ, रोज़ाना की तरह बहुत सारे जो पक्षी हैं वो आने लगे। और पड़ोस में एक बुज़ुर्ग थे, वो उन्हें देखते रहते थे तो कहते थे कि आप चिड़िया को दाना डालते हो और ये जो पंछी आते हैं इसकी वजह से हमारी छत पर भी बहुत सारा गंद पड़ जाता है। लेकिन उस बात को उन्होंने इग्नोर किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे ही भरोसे हैं, हम अगर इन्हें दाना देंगे तो ही ये जी पाएंगे और ये हमारे अच्छे दोस्त भी होते हैं। ऐसा ही रोज़ होता था, वो चाय के साथ उन्हें अपना दाना देती थी और वो दाना चुगते थे, वो अपनी चाय पीते थे। एक दिन क्या हुआ कि शाम के समय, वो ठंड की सर्दियों के दिन थे और सर्दियों में हम सभी अपने दरवाज़े खिड़कियां बंद कर लेते हैं ताकि हमें ठंड ना लगे। उन्होंने भी ऐसा ही किया और वो सो गई। जैसे ही सुबह 5 बजने का टाइम था तो गलती से उनसे शायद उनकी गैस की जो नोब है वो ऑन रह गई थी और वो धीरे धीरे गैस जो थी वो रिस रिस कर पूरे घर में फैल गई थी। और जब तक उन तक वो गैस पहुंची वो थोड़ी सी बेसुध सी पड़ी हुई थी और पक्षियों को इसका आभास हो गया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने चोंच मारना शुरू कर दिया उनकी खिड़कियों पे, दरवाज़े पर, बहुत ज़ोर ज़ोर से चोंच मारते गए मारते गए, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि पक्षियों को कहीं भी कोई ऐसी घटना होने वाली हो तो पहले से ही आभास हो जाता है। और जब उन्होंने सबने मिलकर चोंच मारना शुरू किया तो उनसे जो आवाज़ हुई तो उनकी नींद एकदम से टूटी और वो उठी और खड़ी हो गई कि आज इन्हें हो क्या गया है, इतनी जल्दी इतना शोर क्यों मचाया है। जब वो उठी तो उन्हें गैस की वजह से जो था उन्हें चक्कर आ रहा था, लेकिन कैसे भी करके वो गिरते पड़ते अपने मेन दरवाजे तक पहुँची और उन्हें लगा कि अंदर गैस फैल चुकी है और उन्होंने कैसे भी करके वो दरवाज़ा खोल लिया और ताज़ी हवा अंदर आई और अपनी जो गैस थी उसे उन्होंने बंद कर दिया। तो श्रोताओं, ये पक्षी ही थे जो उनकी जान को बचा पाए। तो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, देर से ही सही लेकिन ज़रूर मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए श्रोताओं, और ये अच्छे कर्म है। आजकल भी गर्मियों का समय है, अपने छत पर आप दाना डाल सकते हैं, पानी रख सकते हैं पक्षियों के लिए, और पशु भी कई बार हमारे दरवाजे तक आते हैं तो उन्हें भी आप अगर अपनी तरफ से कुछ दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। तो इस कहानी के बाद हम आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे प्यारा सा गीत। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, ऐसी ही कहानियाँ हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोताओं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना चितचोर फिल्म का ये गीत 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कार्यक्रम। गुड इवनिंग धर्मशाला, आप सभी सुन रहे हैं श्रोताओं। और कार्यक्रम का समय आपको एक बार फिर से बता दें, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय रोज़ाना रहता है शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक। और इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करते हैं बातचीत और आप तक पहुंचाते हैं जानकारियां और प्यारे प्यारे गीतों से करते हैं आपका मनोरंजन। तो श्रोताओं, फिर से हम यही कहेंगे कि गीतों के साथ ज़रूर जुड़िए, गीतों के साथ मन लगाइए। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे साथ कोई नहीं होता, ये जो गीत हैं ये हमारा दिल भी लगाए रखते हैं और बहुत कुछ ये गीत कहते हैं जो कई बार हमारे दिल की बात भी कह जाते हैं। तो गीतों को ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में अब समय हो रहा है प्रादेशिक समाचारों का। तो श्रोताओं, चलते हैं सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने छोटे सेब उत्पादकों के लिए MIS के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने और चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया बिलों का जल्द भुगतान करने के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला में समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से निपटने के लिए युवाओं को जागरूक करने पर दिया बल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विधान मंडलों के कार्य संचालन व प्रक्रिया नियमों में समानता लाने में लोकसभा के प्रयास सराहनीय। भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए जारी किए संकल्प पत्र, कांग्रेस ने सोलन नगर निगम के लिए घोषणा पत्र किया जारी। और भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त और सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भी शीघ्र निपटान किया।

0: जाए। सुखविंदर सिंह सुखू ने सभी देनदारियों का निपटारा 4 दिनों के भीतर करने और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश परियोजना प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रभावी व दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। शिमला में आज परियोजना की प्रगति व क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,687 करोड़ की लागत की इस परियोजना का मुख्य देश आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे की पुनर्स्थापना करना है। सुखविंदर सिंह सुखू ने किसानों व बागवानों के लिए मजबूत सुविधाएं और ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी फसल और आजीविका सुरक्षित रह सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य के लिए 31 मई तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोकभवन में यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल द्वारा आयोजित तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त व स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इस दौरान यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संगठन द्वारा चलाए जा रहे मिशन यूथ फॉर राइज नो टू ड्रग्स यस टू पैशन की विस्तृत जानकारी दी। इस मिशन के अंतर्गत तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान को सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है। राज्यपाल ने संगठन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए युवाओं में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी व सामूहिक सामाजिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बीच राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हिमाचल प्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक विवेक पठानिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आज लोकभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने और कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि कार्य संचालन और प्रक्रिया नियम हर विधानसभा की रीढ़ होते हैं और ये नियम सदन के कामकाज को नियंत्रित करने, अनुशासन बनाए रखने व लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करते हैं। कर्नाटक विधानसभा द्वारा मैसूर में आयोजित राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधान मंडलों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों में राष्ट्र स्तर पर समानता लाने के लोकसभा के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि एक समान मॉडल विधायी कामकाज की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रचलित कार्य संचालन पद्धति व नियमावली का विस्तृत विवरण भी दिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, xhandle@AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने नगर निगमों सोलन, पालमपुर व धर्मशाला में आगामी 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि सोलन को प्रदेश का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। उधर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला को आधुनिक, सुव्यवस्थित, पर्यावरण अनुकूल और विश्व स्तरीय पर्यटन शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा तैयार किया गया ये संकल्प पत्र केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि धर्मशाला के भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है। सुधीर शर्मा ने कहा कि ये संकल्प पत्र शहर की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
1: नगर निगम के सामूहिक विकास की दृष्टि से पार्टी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, ये संकल्प पत्र पूरे नगर निगम को एक दृष्टि में रखते हुए तैयार किया गया है। शपथ पत्र में मुख्यतः जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नगर निगम धर्मशाला को विकसित करने के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए विचार रखती है।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने नगर निगम पालमपुर के चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र पालमपुर के समग्र विकास का रोड मैप है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी सोलन नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नगर निगम चुनाव प्रभारी व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की उपस्थिति में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सोलन शहर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की समस्या का जल्द निपटारा किया जाएगा और शहर को शत प्रतिशत सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा।
2: पिछले सवा तीन साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सोलन की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि दिक्कत थी, लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए जो है वो अलग अलग वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को ठीक करने के लिए खर्च किया गया है। हमारी कोशिश ये भी है कि हर वार्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए।
0: इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता पूरी तरह त्रस्त है। पालमपुर में आज नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से झूठे वायदे किए, लेकिन महिलाओं को 1500 रुपए और युवाओं को रोजगार की झूठी गारंटियों ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश विशेषकर पालमपुर में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और हिमाचल की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ चलने का मन बना चुकी है। उन्होंने नगर निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का दावा भी किया। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग को लोक निर्माण विभाग ने छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। करीब 14,500 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले इस मार्ग के खुलने से पांगी घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है और वाहनों की आवाजाही आरंभ होने से घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से जुड़ गया है। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने साच पास मार्ग को रिकॉर्ड समय में बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की सराहना की है। उपायुक्त ने बताया कि इस मार्ग के खुलने से चुनाव संबंधी सामग्री पांगी घाटी तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। उधर मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को भी आधिकारिक रूप से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रोजेक्ट हिमांक की स्नो क्लियरेंस टीम ने सड़क संपर्क बहाल करने की उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर 38 कोर टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल गौरव बंगारी, ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल तेजस मोरे और कैप्टन साजय कृष्णा भी मौजूद रहे। सीमा सड़क संगठन की टीमों द्वारा बर्फ हटाने का कार्य 16 मार्च से शुरू किया गया था और शून्य से नीचे तापमान व हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम करते हुए इस मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने छोटे सेब उत्पादकों के लिए MIS के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने और चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया बिलों का जल्द भुगतान करने के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला में तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान का किया शुभारंभ। समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से निपटने के लिए युवाओं को जागरूक करने पर दिया बल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विधानमंडलों के कार्य संचालन व प्रक्रिया नियमों में समानता लाने में लोकसभा के प्रयास सराहनीय। भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए जारी किए संकल्प पत्र, कांग्रेस ने सोलन नगर निगम के लिए घोषणा पत्र किया जारी और भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: 91.2 MHz पर श्रोताओं आप सभी जुड़े हुए हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोताओं समाचारों के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला का समय भी अब समाप्ति की ओर है। तो अब हम आपसे बात ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, पर हाँ चलते चलते आपको आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत जरूर सुनवा के जाएंगे। द ट्रेन फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। सुनिए इस गीत को और अपनी रेडियो दोस्त सुषमा को दीजिए आज के लिए जाने की अनुमति। अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। जय हिंद।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाह कर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आएं? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं रलने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज़ है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे
2: कर्तव्य?
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हाँ भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दे, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि को ही चुने।
5: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
6: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
7: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
8: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

दोस्तों, ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त सुरुचिका। हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर, गीत सुहाने नए पुराने।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक ही नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यहाँ शिक्षा है कॉन्सेप्ट बेस्ड, जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स, इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स के साथ अब छात्र बनते हैं वर्ल्ड रेडी। टेबल टेनिस, जिमनास्टिक, क्रिकेट, हॉर्स राइडिंग हो या स्विमिंग, रेनबो है सब में आगे। इसके साथ ही एक खास पहल, नीट, जेई, सीयूईटी और एनडीए के लिए स्कूल के साथ फ्री कोचिंग। एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पोर्ट्स ब्रिलियंस और कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन सब एक ही जगह, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगमा। तो आज ही संपर्क करें 7807849222 या फिर 9418604444।
1: मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ?
2: मुझको स्कूल में सब बुद्धू बोलते रहते हैं।
1: मैं डरने में भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ।
3: बच्चे का बार बार बीमार पड़ना, जल्दी थक जाना या देर से समझ आना, ये सब कुपोषण के लक्षण हो सकते हैं। कुपोषण यानी सही पोषण का ना मिलना। गर्भ से लेके जन्म के पहले 2 साल बच्चे में इसका सबसे ज्यादा खतरा होता है। आज देश का लगभग हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी शरीर और दिमाग से कमजोर।
4: अरे ये पेड़ तो सूख गया, चलो इसमें पानी डालते हैं।
5: अब पानी डाल के क्या फायदा?
4: अरे पानी डालेंगे तभी तो फूल खिलेंगे।
5: अरे पापा, आप ही ने तो बताया था जब पेड़ एक बार सूख जाए उसमें जितना भी खाद पानी डालो वो ठीक नहीं हो सकता।
6: आप ही ने तो कहा था कि एक बार घड़ा खराब हो जाए तो वो दोबारा ठीक नहीं हो सकता।
3: अगर एक बार बच्चा कुपोषण का शिकार हो गया तो चाहकर भी हम दोबारा उसे ठीक नहीं कर सकते। अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें।
7: 1, गर्भवती को खाना अच्छा। 2, पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3, 6 महीने से स्तनपान। 4, फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान।
0: नमस्कार दोस्तों, चुनावी चर्चा की चौपाल अब सजेगी आपके अपने रेडियो गुंजन पर। पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की हलचल तेज है। ग्राम स्वराज के लिए काबिल प्रतिनिधि चुनने का वक्त आ गया है और इस खास अवसर पर रेडियो गुंजन धर्मशाला

आप सभी के लिए लेकर आ रहा है विशेष कार्यक्रम चुनाव संवाद। इस कार्यक्रम में हम आपके क्षेत्र के उम्मीदवारों से सीधी बातचीत करेंगे और उठाएंगे आपके मुद्दे, आपके सवाल। क्या आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के उम्मीदवार इस मंच पर आए? क्या आपके मन में है कुछ सवाल जिनका जवाब आप जानना चाहते हैं? तो देर किस बात की, अभी अपने सवाल और अपने क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम हमें भेजें व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से। हमारा नंबर रहेगा 7018170918117091। आइए बने एक जागरूक नागरिक, क्योंकि आपका वोट आपकी आवाज है।

0: दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक नई सरकार चुनेगा। हर नागरिक को इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इस वोट के अधिकार को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी थी। तो आइए उन्हें याद करके आज हम ये शपथ लें कि हम अपना वोट जरूर डालेंगे। अपने देश के लिए अपनी ये अहम जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। जय हिंद।
1: कैसे?
2: कर्तव्य।
1: सड़क सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी पार्ट है कर्तव्य। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचें। अरे हो भाई साहब, अगर सड़क के बीचों बीच इस तरह से ट्रक छोड़ेंगे और चले जाएंगे तो पीछे से स्पीड में आ रही गाड़ी जो है ठोक देगी ना आपको। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस निर्धारित पार्किंग स्पॉट में ही गाड़ी को लगाएं। और अगर किसी कारण बीच सड़क में आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो हमेशा पार्किंग लाइट ऑन करें और वार्निंग ट्रायंगल गाड़ी से थोड़ी दूर जाकर के लग दें, ताकि आने वाला जो ट्रैफिक है उसे पता चले कि सामने गाड़ी रुकी हुई है।
3: समझ गए सर।
1: तो याद रखना, कैसे कर्तव्य निभाएंगे तभी तो दूसरों से अपेक्षा रख पाएंगे।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: धर्मशाला के निवासी भाइयों और बहनों, नगर निगम चुनाव का समय आ गया है। याद रखिए, हमारा शहर खुद ब खुद विकसित नहीं होगा। इसके लिए हमें चाहिए एक ऐसी दूरदृष्टि जो धर्मशाला को नई ऊंचाइयों पर ले जाए।
4: जी बिल्कुल, एक गलत चुनाव हमारे शहर को पीछे धकेल सकता है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचाने, नगर निगम में केवल एक ईमानदार और कर्मठ प्रतिनिधि

0: ही चुने।
1: आपका एक वोट धर्मशाला का सुनहरा भविष्य है।
2: जागो नागरिक, सोचो समझो और सही प्रतिनिधि चुनो।
3: काकू, दुनिया में एक ऐसी चीज का नाम बता जिससे तेरी बीवी का कभी दिल नहीं भरता।
4: एक नहीं, ऐसी दो चीजें हैं, एक कपड़े और दूसरे गोलगप्पे। कितने ही खिला लो और कितने ही दिला लो, कभी जी नहीं भरेगा।

गुंजन रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो। हम सबका यही है प्रयास, दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

91.2 FM पर ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त मनीषा और हाजिर हो गई हूँ भक्ति संगीत का कार्यक्रम लेकर।

ये है आप सभी का अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत की आराधना का।